0: Mitchie Roshi.
1: Only on Radio Mitchie New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जिससे डरते थे वही बात हो गई। जब मैं अपने देन बॉयफ्रेंड का नाम अपने रिस्ट पर टैटू करा रही थी, थैंकफुली नॉट हिज पूरा नाम, जस्ट उसके नाम का इनिशियल, कितने लोगों ने इंक्लूडिंग माय ओन ब्रदर सेड ना कर बेटा पछताएगी। दो साल तक मैं नहीं पछताई, लेकिन जब मेरा बहुत हो गया एंड आई डिसाइडेड टू वॉक आउट ऑफ द रिलेशनशिप, आई वॉज लेफ्ट विद दैट इनिशियल का टैटू ऑन माई रिस्ट, मेरे राइट हैंड की रिस्ट, और उसे कवर अप करने के लिए मुझे उससे बड़ा टैटू कराना पड़ा, विच वॉज अ हार्ट शेप टैटू। इट्स क्यूट एंड ऑल, बट आई वॉज लाइक, ये सोच रोसी, अगर पूरा नाम टैटू करा लेती या अगर पूरा नाम इंक्लूडिंग हिज सरनेम टैटू करा लेती, तब तो आम काटनी पड़ती ना टू गेट रिड ऑफ द टैटू। तो मुझसे ये एडवाइस ले लो कि किसी के नाम का टैटू मत कराना। नो मैटर हाउ मच यू लव देम, यू नेवर नो व्हेन इट्स गोइंग टू एंड। दो आई विश आपका रिलेशनशिप कभी एंड ना करे, लेकिन अगर हो गया है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड माय डार्लिंग, हिट मी अप ऑन योर सोशल्स, एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Burka, burka. La vieja la burka.
2: Mirchi, burka.
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
3: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
3: कोई बोल रहा है?
4: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आप सर रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
11: थैंक यू
12: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोलने के बाद दैट यू आर अ प्योर वेजिटेरियन, घर जाके जो मीट एंड चिकन पारते हो आप, उसे पता चल गया तो क्या होगा जीवन में, सोचाएगा भी?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: बस सोचते ही तो नहीं हो आप, और अगर ना सोचते सोचते या एक्स्ट्रा सोचते सोचते यू डन समथिंग नॉटी इन योर लाइफ, नाउ इज द टाइम टू कन्फेस इट. और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो नॉटी बॉय.
4: हाय रोशी,
2: हाउ आर यू?
4: मैं एकदम बढ़िया हूँ रोशी, आप बताओ?
2: आप एक्चुअली बढ़िया से ज्यादा बढ़िया हो, क्योंकि आपने जब मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी कन्फेशन बताई थी ना, इट मेड मी रीथिंक ऑल ऑफ माय डेटिंग ऐप के बंदे जिन्हें मैंने राइट स्वाइप किया है. आपको ये चीप हरकतें करते हो शर्म नहीं आई?
4: थोड़ी सी आई थी
2: और उसके बाद भूल गया. आई वाज लाइक इट डजंट मैटर, इतनी सी शर्म काउंट भी नहीं करती है. बट ओके, आपका ये मोडस ऑपरेंडी जो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे समझाया था, जरा मुझे फोन पे समझाना.
4: तो होता क्या है, मैंने डेटिंग ऐप से स्टार्ट किया डेट करना. तो मैं वहाँ पे ऐसी गर्ल्स, ऐसी लड़कियों को ढूंढता था जो फेमिनिस्ट हो. मतलब मैं चाहता था हम डेटिंग पे जाएं, अच्छे रेस्टोरेंट में और सारी चीजें करें, बट खर्चा नहीं करना चाहता था मैं, अपने पैसे थोड़े बचाना चाहता था.
2: तो इससे फेमिनिस्ट लड़कियों का क्या लेना देना है?
4: इससे ये लेना देना है कि जब मैं उनके साथ जाता था अच्छे रेस्टोरेंट में, और मैं हम बात ये करते थे कि हाफ हम मैं पे करता हूँ, हाफ आप पे करो, तो वो कहती थी कि तुम क्यों पे करोगे? सारे पे मतलब सारा बिल, पूरा बिल मैं देती हूँ.
2: वन सेकंड, सो आप एक अमीर फेमिनिस्ट ढूंढते थे जिसे मजे आते थे सारा बिल उसे देने में?
4: राइट राइट राइट. फिर ये एक दो बार तो चलता था, बट आफ्टर टू और थ्री डेज हम जाया करते थे, तो फिर वो रेडी हो जाती थी कि हाँ हाफ आप पे कर दो. और फिर मेरा खर्चा होने लगता था, तो मैं क्या करता था, उनको लेफ्ट स्वाइप करके आगे बढ़ जाता था और कोई नई लड़की ढूंढता था, ये कहानी दोबारा रिपीट करने के लिए.
2: ये आप कितनी बार कर चुके हो?
4: आई थिंक 7 or 8 times.
2: आपको 7 or 8 बार ऐसी फेमिनिस्ट लड़कियां मिली हैं जिन्हें एक्चुअली पहली दो डेट्स में पूरा बिल देने में कोई शर्म नहीं आती थी?
4: नहीं.
2: उन्हें नहीं लगता था कि ये बंदा कितना बड़ा लाइक ग्राउच है, स्क्रूज है, हाँ? और आप उन्हें एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लेके जाते थे या आपका समोसे छोले में हो जाता था?
4: नहीं नहीं, एक्सपेंसिव, जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो फिर एक्सपेंसिव ही बनता है.
2: आपने मटन रान खाया है ना दूसरी लड़कियों के पैसों में? हंस रहा है भाई तू? मैं सोच रही हूँ कि रोशिफाई करना हुई है कि नहीं, बट ठीक है, बिकॉज वी डोंट जज एनीबॉडी. ये लो रोशिफिकेशन.
0: यू've been roshified.
2: और अगर आपने मुझसे 2 मिनट और बात कर ली ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे भी पैसे मांग लोगे.
4: आप चलोगे मेरे साथ?
2: ओके बाय, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे भाईयाद मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई भी सीक्रेट कन्फेशन है, देन हिट मी अप. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: यही तो एक गलती कर रहे हो आप जिंदगी में. नमक सिर्फ खाने में नहीं, आपके पोछे में भी होना चाहिए. इफ यू थिंक आई एम कुकू, थिंक अगेन. क्योंकि ये एक वास्तु और फेंगशुई दोनों का प्रिंसिपल है. अगर जीवन में आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स, खास करके आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फेल होते जा रहे हैं, इट्स नॉट यू रे, आप तो इंसान बहुत अच्छे हो. प्रॉब्लम ये है कि आपके रिश्तों को नजर लगती है. इज दैट राइट? नेगेटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप्स में पनपती है. और अगर ऐसा हो रहा है देन सिर्फ एक नमक का पोचा विल कॉज योर प्रॉब्लम्स टू गो अवे. क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो इतनी सस्ती चीज है जो सारी नेगेटिविटी को बैनिश कर देती है. करना कुछ नहीं है, या तो पोचे के पानी में डाल दो, पूरे घर की नेगेटिविटी साफ हो जाएगी, या नहाते समय अपने मग्गे में एक चम्मच भर नमक डाल के उसे अपने ऊपर उड़ेर लो. आई जस्ट सेड उड़ेर लो, एंड उसके बाद सब कुछ स्पष्ट और साफ हो जाएगा. एंड वंस दैट वर्क्स फॉर यू, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB सो दैट यू कैन थैंक मी फॉर इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. सो गो अहेड, जानू मानू, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है, एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तू एक बात सुन, ये आपके हो
4: पास
2: क्या है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा? 33501। हाँ सर, 33501।
2: हेलो।
4: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना आता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं कुकड़ू को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: नैनो की खता है, नैनो को पता है. In this case, नैना बेचारी, I don't think she had any idea of what was going to come and hit her. लेकिन अगर आपकी भी जिंदगी में नैना की तरह कोई भी भासड़ है, hit me up on Insta या FB, we will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. And meanwhile, नैनो की खता वाली, hi नैना.
3: Hi Roshi.
2: How are you, darling?
3: I'm absolutely fine, and especially after talking to you, like I've got your call and I'm like, oh my god.
2: You're totally made my day. अपना बताओ कि आपकी जिंदगी में something is not working out right.
3: It's actually something that मैं एक relationship में हूँ and it's 3 years old, you know. So okay. We are still continuing it. So मुझे कुछ time पहले ही पता चला that my boyfriend literally got drunk, like hell drunk, and he confessed something which actually was shocking to me.
2: Okay.
3: And he told me ki 3 saal pehle when we started, you know, going out and dating each other. So one night he was so drunk and my best friend was there. And somehow they ended up together, you know, spent an entire night together.
2: So ye tab ho raha tha jab aap dono relationship mein the, like you had gotten
3: bilkul naya naya, I think naya naya when he started it. But then he also told me ki it was just a one thing. It happened like out of nowhere. Maine usko bol to diya ki okay fine, because मुझे लगा आई डोंट नो कि मैं उसे क्या रिएक्ट हूँ. तो आई वाज टोटली नम बाय द थॉट कि हाउ कैन माय बेस्ट फ्रेंड डू समथिंग लाइक दिस, यू नो, कि एक बेस्ट फ्रेंड कैसे कर सकता है किसी के साथ. और एटलीस्ट अगर उसने नहीं बताया, मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझे बता देना चाहिए था.
2: आई कैन एक्चुअली ऑनेस्टली इमेजिन हाउ यूर फीलिंग, बिकॉज एक तो योर बॉयफ्रेंड इज टेलिंग यू कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप ही काइंड ऑफ चीटेड ऑन यू, दूसरा ही चीटेड ऑन यू विद योर ओन बेस्ट फ्रेंड. ऊपर से बताने वाला आपका बॉयफ्रेंड नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो शायद शी वुड रीच आउट एंड टेल यू सूनर. सो ऑनेस्टली आपके दो लेवल के दुविधा होने चाहिए ना, कि एक तो कि हाउ डू यू कन्फ्रंट इट विद योर बेस्ट फ्रेंड, दूसरा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द फैक्ट दैट योर बॉयफ्रेंड चीटेड ऑन यू, इवन इफ इट वाज एट द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप.
3: आई ऑलवेज बिलीव, यू नो, दैट बीइंग समवनस पार्टनर बिफोर यू आर इंडिविजुअल फर्स्ट, यू हैव योर ओन पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग. एंड आई थिंक व्हेन यू आर ड्रंक और यू हैव समथिंग मीनिंगलेस, आई डोंट थिंक इट विल मेक एनीथिंग. अब मुझे इस पर ज्यादा कुछ रिएक्ट करना चाहिए, बिकॉज इट हैपेंड. आई फील लाइक दैट आई एम ओके. इज इट ओके टू फील लाइक दिस?
2: एक्चुअली ऑनेस्टली आई थिंक यू हैव अ वेरी सेंसिबल परसेप्शन to this, because अगर मैं आपकी जगह होती, and women के लिए it is actually more integral कि आप emotionally cheat नहीं करो, and the fact that your boyfriend has not emotionally cheated on you and he came out clean, right? आपके best friend और boyfriend के बीच में your boyfriend told you this. So I feel like if you're feeling like forgiving him, it's only just the right thing to do. क्योंकि 3 साल बाद ही सही, but he has come out clean, told you what happened, and it was just a one night thing. The other thing that obviously is bothering you is कि ये जो best friend है, इसने जो किया है, उसको कैसे deal करना है? I think you should confront your best friend. अब boyfriend के साथ तो खैर जो हो गया हो गया, ही वॉज अ बैड पर्सन, अगर फिर से उसने किया तो आप कुछ मत करना, आई विल बी देयर टू फेंड फॉर यू. ठीक है, गर्दन नहीं बचेगी आपके बॉयफ्रेंड की, बोल देना उसको.
3: फॉर क्लियरिंग माई क्लाउड्स,
2: यू आर सो वेलकम. इट वॉज सो अमेजिंग टॉकिंग टू यू नैना, ऑल द बेस्ट फ्रॉम द कॉन्फ्रंटेशन.
3: थैंक यू सो मच एंड आई लव योर शो.
2: आई लव यू नैना. और अगर आपकी भी जिंदगी में नैना की तरह कोई भी ऐसे इश्यू है दैट्स ड्राइविंग यू क्रेजी, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, बट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मुझे genuinely ये नहीं पता था that calf raises can be so turning on, especially अगर वो जिम के बाहर हो रहे हैं. Before you think I'm talking about something totally chaotic, मैं ऑफिस आई and one of my office colleagues was just randomly standing against the wall और वो calf raises कर रहा था. और आज तक मैंने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा, बट जब मैंने देखा उसे calf raises करते हुए, I was like, यार ये तो काफ़ी हॉट पंदा है. और उसके बाद भाई वो मेरे से ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की बातें करने लग गया. एंड देन ही टोल्ड मी कि आई कैन कंसिडर ओमैट विच इज़ वन मील अ डे. एंड आई वाज लाइक, ये कॉन्वर्सेशन इतनी टर्निंग ऑन कैसे होती जा रही है. एंड देन आई रियलाइज दैट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ डिवोटेड टू फिटनेस, इस तरह के लोग आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे. एंड इस तरह के लोग जिम जाएं ये ज़रूरी नहीं है. इनफैक्ट गाइज हु गो टू जिम्स एंड मेक देयर बॉडी, वो मुझे इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं जितने एथलेटिक किस्म के लोग मुझे पसंद है. यू नो, जो ऑफिस में खड़े होकर काफ रेजेस कर रहे होते हैं. अगर आप उन लोगों में से एक इंसान हो जो अपनी फिटनेस के लिए ऑफिस में ऐसे पुशअप्स कर रहा होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, इट डजेंट मैटर इफ यू आर फ्लेक्सिंग योर मसल्स, यू आर माई काइंड ऑफ गाय. आई थिंक यू शुड हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, darling, do your calf raises and hit me up. And while you do that, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Guys, get a room. ये एडवाइस मैंने अपने कपल फ्रेंड्स को दिए हु बीन टुगेदर फॉर 3 इयर्स. तो हम एक पार्टी में थे एंड शी लुक्ड अ लिटिल बिट अपसेट एंड आई आस्क्ड हर क्या हो गया एंड शी इज लाइक पता नहीं यार 3 साल से इकट्ठे हैं हमारी इंटिमेसी वाली लाइफ इतनी बोरिंग हो गई है दैट आई जस्ट फील लाइक वन ऑफ अस शुड हैव एन अफेयर जस्ट टू स्पाइस थिंग्स अप एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट बेब get a room. She was like, इसका क्या मतलब है? And I actually told her that a lot of couples, उनकी जिंदगी में intimacy इसलिए जिंदगी से बाहर चली जाती है because they don't do exciting or different things. आप एक ही चीज रोज कैसे कर सकते हो? क्या आप रोज ढोकला खा सकते हो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के लिए? नहीं. रोज दाल चावल खा सकते हो? नहीं. You have to shake things up. And one way of shaking things up is if you guys actually get a room in a hotel, which is true. एक staycation करके देखो अगर आप एक long term relationship में हो and the intimacy is kind of getting boring. इसे करने से होगा ये कि क्योंकि ये एक exciting चीज है शायद आपने अपने dating के early days में किया था और आप भूल गए हो how that excitement and arousal feels. इसे करके maybe it can bring the spark back into your love life and more importantly your naughty life. इसे try करके देखो and I know for a fact that it's going to work for you. तो मुझे already ना आप sugar free chocolates courier कर दो और कॉन्वर्सेशन करने के लिए अपना नंबर डीएम कर दो इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हेलो
1: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं?
0: हाँ जी बोलिए।
1: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
0: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ। हिडन चार्जेस?
2: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
0: कौन बोल रही है?
1: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
0: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
3: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
0: हेलो कौन बोल रहा है?
1: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
0: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
2: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
0: हेलो मैडम।
1: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
0: कौन बोल रहा?
1: रमेश बोल रहा हूँ सर।
0: अभी कोई और बोल रही थी।
1: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
0: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
4: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
0: कौन बोल रहा है?
1: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
0: 2 दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
5: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
0: कौन बोल रहा है भैया?
1: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
0: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
6: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
1: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ आपसे, रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
7: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
8: थैंक यू
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Roshi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोलने के बाद दैट यू आर अ प्योर वेजिटेरियन, घर जाके जो मीट एंड चिकन पारते हो आप, उसे पता चल गया तो क्या होगा जीवन में, सोचाएगा भी?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: बस सोचते ही तो नहीं हो आप, और अगर ना सोचते सोचते या एक्स्ट्रा सोचते सोचते यू डन समथिंग नॉट इन योर लाइफ, नाउ इज द टाइम टू कन्फेस इट. और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो नॉटी बॉय.
4: हाय रोशी,
2: हाउ आर यू?
4: मैं एकदम बढ़िया हूँ रोशी, आप बताओ.
2: आप एक्चुअली बढ़िया से ज्यादा बढ़िया हो, क्योंकि आपने जो मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी कन्फेशन बताई थी ना, इट मेड मी रीथिंक ऑल ऑफ माय डेटिंग ऐप के बंदे जिन्हें मैंने राइट स्वाइप किया है. आपको ये चीप हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई? आपका ये मोडस ऑपरेंडी जो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे समझाया था, जरा मुझे फोन पे समझाना.
4: तो होता क्या है, मैंने डेटिंग ऐप से स्टार्ट किया डेट करना. तो मैं वहाँ पे ऐसी गर्ल्स, ऐसी लड़कियों को ढूंढता था जो फेमिनिस्ट हो. मतलब मैं चाहता था हम डेटिंग पे जाएं, अच्छे रेस्टोरेंट में और सारी चीजें करें, बट खर्चा नहीं करना चाहता था मैं, अपने पैसे थोड़े बचाना चाहता था.
2: तो इससे फेमिनिस्ट लड़कियों का क्या लेना देना है?
4: इससे ये लेना देना है कि जब मैं उनके साथ जाता था अच्छे रेस्टोरेंट में, और मैं हम बात ये करते थे कि हाफ हम मैं पे करता हूँ, हाँ, हाफ आप पे करो, तो वो कहती थी कि तुम क्यों पे करोगे,
2: हाँ,
4: सारे पे मतलब सारा बिल, पूरा बिल मैं देती हूँ.
2: So, आप एक अमीर फेमिनिस्ट ढूंढते थे जिसे मजे आते थे सारा बिल उसे देने में.
4: राइट राइट राइट. फिर ये एक दो बार तो चलता था, बट आफ्टर टू और थ्री डेज हम जाया करते थे,
2: हाँ,
4: तो फिर वो रेडी हो जाती थी कि हाँ हाफ आप पे कर दो,
2: हाँ,
4: और फिर मेरा खर्चा होने लगता था. तो मैं क्या करता था, उनको लेफ्ट स्वाइप करके आगे बढ़ जाता था और कोई नई लड़की ढूंढता था, ये कहानी दोबारा रिपीट करने के लिए.
2: ये आप कितनी बार कर चुके हो?
4: आई थिंक 7 or 8 टाइम्स.
2: आपको 7 or 8 बार ऐसी फेमिनिस्ट लड़कियां मिली हैं जिन्हें एक्चुअली पहली दो डेट्स में पूरा बिल देने में कोई शर्म नहीं आती थी?
4: नहीं.
2: उन्हें नहीं लगता था कि ये बंदा कितना बड़ा लाइक ग्राउच है, स्क्रूज है, हाँ? और आप उन्हें एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट देके जाते थे या आपका समोसे छोले में हो जाता था?
4: नहीं नहीं, एक्सपेंसिव, जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो फिर एक्सपेंसिव ही बनता है.
2: आपने मटन रान खाया है ना दूसरी लड़कियों के पैसे में? हंस रहा है भाई तू? मैं सोच रही हूँ कि रोशिफाई करना भी है कि नहीं, बट ठीक है, बिकॉज़ वी डोंट जज एनीबॉडी. ये लो रोशिफिकेशन.
5: You've been roshified.
2: और अगर आपने मुझसे 2 मिनट और बात कर ली ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे भी पैसे मांग लोगे.
4: आप चलोगे मेरे साथ?
2: ओके बाय, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे वाहियात मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई भी सीक्रेट कन्फेशन है, देन हिट मी अप. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जिंदगी में हमें कई बार ऐसा लगता है जब हम एक नया रिलेशनशिप बनाते हैं उसमें किस लेवल तक हम अपनी ट्रू जिंदगी को कन्फेस कर सकते हैं इन अ कपल ऑफ वीक्स या मंथ्स डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोज एंड इंटीमेट योर पार्टनर इज विद यू. अगर आप उनके साथ अपनी जिंदगी के स्पेशली वो पीरियड्स ऑफ योर लाइफ व्हिच हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू वो शेयर करते हो ना देन ऐसी कन्फेशंस कैन एक्चुअली हेल्प यू बॉन्ड बेटर. आई रिमेम्बर मेरे लास्ट रिलेशनशिप में आई डिस्कस माई एक्सट्रीमली चेकर्ड रिलेशनशिप विद माई डैड विद माई देन बॉयफ्रेंड और हमें डेट करते हुए शायद उस वक्त 2 ही महीने हुए थे बट बिकॉज आई शेयर्ड समथिंग सो क्लोज टू माई हार्ट विद हिम ही कुड शेयर विद मी कि उसके और उसकी मम्मी का रिलेशनशिप भी कुछ वैसा ही था जो मेरे डैड और मेरा है एंड दैट गॉट अस सो क्लोज टुगेदर ना दैट जब हम ब्रेकअप कर रहे थे हम एक दूसरे से यही डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसी इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस अबाउट द वूंड्स ऑफ आवर हार्ट हम किसी और से नहीं कर पाए हैं. So maybe having real life confessions with your partner is not such a bad idea because it actually helps you bond better. But जब आप ऐसा कर रहे हो ना, make sure कि आपका partner आपकी सारी insecurities और wounds के बारे में sensitive हो. क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होगा ना, then there's no point opening up because it might end up actually making your wounds even worse. So use your discretion, use your judgment. और अगर आपको इसमें किसी की मदद की जरूरत है, मैं तो हमेशा ही अपने आप को आपका रोशी कहती हूँ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. काम है आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. तो सोच क्या रहे हो? हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड व्हाइल यू डू दैट लेट मी टेल यू दिस. जिसके पास लव है उसके पास सब है एंड आई लव यू लोड्स.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La
1: virva la murga. Milci, murga. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहा है मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़िया। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट गाना।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

बस यही तो करते हैं हम यहाँ पर, एक याद आती है और हम साथ साथ पूरी की पूरी बारात निकाल देते हैं यादों की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने फिल्में, पुराने गाने, और एक्चुअली पुराना कहाँ होता है, जब भी इनका जिक्र होता है कोई बात होती है तो कोई ना कोई ऐसी याद है जो ताज़ा हो जाती है। जैसे कयामत से कयामत तक फिल्म के बारे में आपको सबसे पहले कैसे पता चला था, सबकी अपनी अलग अलग एक याद होगी, है ना। जो उस टाइम पे टीनेजर्स रहे होंगे या यंगस्टर्स रहे होंगे या रिलेशनशिप में होंगे, उनके लिए फिल्म अलग मायने रखती होगी। हो सकता है किसी ने अपने पार्टनर के साथ ही जाके फिल्म थिएटर में देखी हो, किसी ने फैमिली के साथ देखी हो, या मेरे जैसे कभी बाद में VCR पे वीडियो कैसेट में देखी हो। हो सकता है किसी ने आमिर खान को सबसे पहले रंग दे बसंती में देखा हो, फिर उसको पता चला हो कि कयामत से कयामत तक उसकी पहली फिल्म थी, या 3 इडियट्स में उनको पहले देखा हो और बाद में QSQT कयामत से कयामत तक के बारे में पता चला हो। सो पुरानी यादें पुरानी होती नहीं है, हमेशा नई रहती हैं हमारे दिल में। ये गाना सुन लेते हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana.
2: Ya bana.
1: Murga, murga. Nafiyat wala murga.
2: Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
7: ये बेल जा रही है।
5: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई तो एक बात सुन, ये आपके हो
5: पास
3: क्या है?
5: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
3: किस से पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
3: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना आता है।
5: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
3: अरे मैं कुकड़ू।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

आपको शायद पता हो या शायद ना भी पता हो कि लेट 80s में दूरदर्शन पे एक बहुत ही अमेजिंग सटायर शो आता था, द फ्लॉप शो बाय जसपाल भट्टी। जसपाल भट्टी उसके मेकर थे, उसमें वो एक्ट भी करते थे, क्या अमेजिंग थे वो। तो उसमें सोसाइटी, कल्चर, सिस्टम में जितने फ्लॉज है ना, उनको कॉमेडी के जरिए दिखाया जाता था। और हर एपिसोड के एंड में एक पैरोडी होती थी उसी टॉपिक से जुड़ी हुई। तो एक बार एक एपिसोड में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज दिखाए थे, जिसमें जसपाल भट्टी खुद एक PhD गाइड होते हैं, उनका एक स्टूडेंट होता है जो केमिस्ट्री में PhD कर रहा होता है। और उसके एंड में जो पैरोडी थी ना, वो होती है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, बीकर को अगर जार कहो जार कहेंगे, करवाते नगर चोरी ये थीसिस तुम कहीं से, पूरी न होती डिग्री रह जाते न कहीं के, हम डिग्रियों को आपकी सौगात कहेंगे, बीकर को अगर जार कहो जार कहेंगे। इसके एपिसोड्स, इसकी ये पैरोडी सब YouTube पे अवेलेबल है। फिलहाल हम ये गाना सुनेंगे सफर फिल्म का, ओरिजिनल वाला मतलब, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: कुछ दिन पहले ना मैं एक फिल्म देख रही थी, 50s की कोई फिल्म होगी, उसमें वाराणसी को काशी कहकर मेंशन किया गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और अचानक से मेरे कान खड़े हो गए क्योंकि पुराना नाम है ना आजकल इतना इस्तेमाल नहीं होता है, हम वाराणसी या बनारस बोलते हैं। फिर मैंने काशी का मतलब गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये संस्कृत के एक शब्द काश से बना है जिसका मतलब होता है चमकदार या प्रकाशमय होना। तो काशी मतलब सिटी ऑफ लाइट्स। एक पुराना गाना भी था जिसमें काशी का मेंशन था, 1954 की नागिन फिल्म का गाना, काशी देखी मथुरा देखी देखे तीर्थ सारे, कहीं न मन का मीत मिला तो आया तेरे द्वारे, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगे ये सोना चांदी मांगे दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ये गाना हेमंत कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने गाया था, हेमंत दा का ही कॉम्पोजिशन था, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था। खैर यहाँ पे हम एक और गाना सुनेंगे अब जिसमें वाराणसी को बनारस कहा गया है। समझ गए ना आप कौन सा गाना है? सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा, अरे

पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारू।

ये क्लासिक गाना 1972 की फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना पिक्चराइज्ड है रेखा एंड रणधीर कपूर पे। वैसे इस फिल्म में रेखा का नाम रेखा ही होता है और रणधीर कपूर का नाम लक्ष्मण, जो रामपुर के वासी होते हैं और गांव से शहर में आ जाते हैं और बड़े मजे होते हैं। फिर क्यूट सा इनका गेटअप जो उसमें दिखाया गया है, धोती कुर्ता पहनते हैं, साथ में अपनी पोटली लिए फिरते हैं, लोटा लिए फिरते हैं और एक संदूक लिए फिरते हैं बक्सा, जिस पर लिखा रहता है नमस्ते जय राम जी की। वैसे आपको पता है रेखा ने एक बार एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि रणधीर कपूर उनके फेवरेट को स्टार थे। उस दौरान उन्होंने काफी फिल्मों में साथ में काम किया था, अर्ली 70s से मिड 70s तक। चलिए फिलहाल 80s में आते हैं, 80s का ही ये ब्यूटीफुल क्लासिक गाना सुनते हैं पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1972 की फिल्म जवानी दीवानी कादर खान साहब की एज डायलॉग राइटर पहली फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो फिल्म के डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने कादर खान साहब का लिखा एक प्ले देखा था और तब से वो उनकी राइटिंग के फैन हो गए थे। तो उन्होंने कादर खान साहब को अप्रोच किया फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए। जवानी दीवानी से पहले भी एक फिल्म के लिए अप्रोच किया था, लेकिन तब कादर खान साहब ने मना कर दिया क्योंकि वो एज सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अपने काम से काफी खुश थे और फिल्मों में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब उनको बार बार ऑफर्स आने लग गए तब उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और बेदी साहब की बात मान के जवानी दीवानी के डायलॉग्स लिख दिए। चलिए फिलहाल तो इस फिल्म का गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: Hello?
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे who's this?
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची it's hot
6: पुरानी जीन्स with चारू only on

एक बहुत ही अमेजिंग क्लासिकल सिंगर रही हैं, जिन्हें पद्मश्री पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, बेगम परवीन सुल्ताना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गजल्स, ठुमरियां और कई गीत गाए हैं। फिल्मों में गाने बहुत ज्यादा नहीं गाए हैं, असमीज फिल्मों में गाए हैं, हिंदी फिल्मों में भी गाए हैं, जिनमें से ये गाना उफ इतना पसंद है मुझे। हालांकि इसका एक दूसरा वर्जन जो किशोर दा ने गाया है वो ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इस गाने की जो गहराई है ना, मैं बयान नहीं कर सकती। इसके लिए परवीन सुल्ताना जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था उस साल। वैसे अवार्ड शायद उनके लिए इतने मायने नहीं रखते हैं, इस तरह के जो सिंगर्स होते हैं वो सिर्फ अपनी कला के लिए जीते हैं, वही उनका रिवॉर्ड होता है और वो उनकी गायकी से भी पता चलता है। तो कुदरत फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय बेगम परवीन सुल्ताना जी सुनते हैं, रिटन बाय मजरू साहब, कंपोज्ड बाय पंचमदा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

आपको पता है जब सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग हो रही थी तो उसपे क्या होता था? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो फिल्म तो देखो फिल्म कैमरा से शूट होती थी, लेकिन उसी के साथ साथ वो जो एक होम वीडियो वाला कैमरा होता है ना, वो भी रखा जाता था ताकि शाम को सारा देओल परिवार बैठ के VCR पे वो रिकॉर्डिंग देखे कि जी हमारा पुत्र सनी देखो जी कितनी बढ़िया सुंदर एक्टिंग कर रहा है, सदके वारी जाए हम। या मेरी नो फीडबैक के लिए भी देखें कैसा कर रहा है, इससे बेटर कर सकता है। इसी बात पे बेताब फिल्म का गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @RJ.Charu, RJ.CHARU इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

हम बॉलीवुड की अर्ली साइफाई मूवीज के बारे में सोचें तो जहन में मिस्टर इंडिया आती है 1987 की। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन आपको पता है 1964 में भी एक साइफाई रोमांटिक कॉमेडी टाइप की फिल्म बनी थी, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। इसमें किशोर कुमार थे। अब किशोर कुमार के पास उसमें क्या सुपर पावर होती है, आपने फिल्म देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती, पर आप ये फिल्म देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग। और इस फिल्म का एक गाना भी बहुत पॉपुलर है जो हम यहाँ पे सुन रहे हैं, रिटन बाय आनंद बख्शी, कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गाया है किशोर दा ने। एक्चुअली इस गाने को टूटे फूटे चोट खाए दिल वालों का एंथम डिक्लेयर किया जा सकता है। व्हाट अ सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

कई बार कुछ मूवीज होती हैं जो इतनी खास नहीं होती हैं, लेकिन आपको याद रह जाती हैं कुछ इक्की दुक्की वजह से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसी एक फिल्म थी 1987 की दिल तुझको दिया, जिसका इक्का कारण था उसका एक गाना जो हम सुनेंगे। एक जो दुख का कारण था वो था अमरीश पुरी साहब का पॉजिटिव रोल। हालांकि इस फिल्म में पहले वो एक गैंगस्टर एक फाइटर होते हैं, लेकिन बाद में वो सुधर जाते हैं और हीरो होता है कुमार गौरव, उसकी हेल्प भी करते हैं। बहुत ही अडोरेबल सा उनका कैरेक्टर है एंड उसमें जो उनका लुक है वो बाल्ड लुक है। आई थिंक ये पहली फिल्म है जिसके लिए अमरीश पुरी साहब ने अपना पूरा सर शेव किया था। आई थिंक किसी और फिल्म के लिए किया था, उसी दौरान इस फिल्म में काम कर रहे थे, ऐसा कुछ सीन था। तो अगर आप कभी ये फिल्म देखेंगे तो अमरीश पुरी साहब को तो जरूर याद रखेंगे। एंड कमिंग टू इस फिल्म का गाना, कंपोज्ड एंड रिटन बाय राजेश रोशन, संग बाय लता मंगेशकर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Milci.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए
3: सर, हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्ज
4: सर, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ सर, मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: Pirani jeans with Charu, only on

1965 की फिल्म खानदान का गाना लता जी का गाया हुआ, कंपोज किया है रवि साहब ने, लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं, नूतन जी, सुनील दत्त साहब, ओम प्रकाश जी, ललिता पवार जी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रोल जो अपना प्ले किया है वो है प्राण साहब ने। इनका नेगेटिव रोल है इसमें, वो ऐसे मतलब गुंडे नहीं बनते हैं कि जिनका अड्डा है वहां पे, बंदूकें बारूद हैं, उनके गुर्गे हैं, चमचे हैं, ये फैमिली ड्रामा है। तो इसमें ये फॉरेन रिटर्न भतीजे का रोल प्ले करते हैं जो घर में आके कलेश कर देता है खानदान में आके। अभी प्राण साहब एक तो इतने न्यूएंसेस अपनी तरफ से अपने किरदार में डालते थे ना, तो ये इनका जो किरदार है इसको ऐसा दिखाया गया है कि सर्कस के जोकर जैसे कपड़े पहनता है, उसकी ऐसी हिटलर जैसी छोटी सी मुच्छी है, उस पे वे अजीब अजीब से मुंह बनाते हैं प्राण साहब, और जिस तरह से बात करते हैं उन्होंने इस किरदार को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है ना कि मजा आ जाता है। तो वाह वाह। और फिलहाल यहाँ पे ये जो गाना आ गया ये भी वाह वाह है पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

1971 की फिल्म महबूब की मेहंदी का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। और इस फिल्म ने ना 1969 से राजेश खन्ना की हिट फिल्मों की जो मैराथन चल रही थी उस पे सॉर्ट ऑफ स्टॉप लगा दिया था। आराधना फिल्म जो उनकी ब्लॉकबस्टर हुई उसके बाद कुछ 17 फिल्में कंसेक्यूटिव हिट्स थी राजेश खन्ना की 1969-70-71 में। सो 1971 में ये महबूब की मेहंदी फिल्म इतनी नहीं चली और यहाँ से मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। लेकिन ये जो गाना आ रहा है ये गर्मा गर्म तड़कता भड़कता सुपरहिट सॉन्ग पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट

हाँ, बरसात की रात फिल्म की ये आइकॉनिक कव्वाली। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये कव्वाली तो अब धुरंधर फिल्म की भी पहचान बन चुकी है। वैसे आपको पता है ये एक और ओजी कव्वाली से इंस्पायर्ड है जो बहुत पहले के सूफी पोएट अमीर बख्श साबरी ने लिखी थी। न तो बुत कदे की तलब मुझे, न हरम के दर की तलाश है। ये नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी परफॉर्म की थी, उससे पहले उनके फादर फतेह अली खान साहब और उनके अंकल मुबारक अली खान साहब ने भी परफॉर्म की थी। और बरसात की रात की कवाली का जो सेकंड पार्ट है भाई, ये 12 मिनट की कवाली है। कुछ 5 मिनट हमने सुन लिए, अब बचे हुए 7 मिनट सुनेंगे। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La viva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
7: ये बेल जा रही है।
5: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई तू एक बात सुन, ये आपके
5: पास
3: है?
5: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
3: किस से पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
3: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना होता है।
5: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विके, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
3: अरे मैं खुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल झपठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए।

Radio Mitri New York. It's hot.

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ। तो हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने रोल मॉडल का चुनाव जरूर करें, लेकिन अपनी विजडम को भी हमेशा जागरूक रखें। आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर श्रेया, हाल ही में न्यू दिल्ली में एक एआई का इंपैक्ट समिट हुआ था, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, और एक बहुत ही कमाल का वहाँ पे दृश्य हुआ जब पीएम मोदी सबके हाथ उठा के उनसे एक तरह से एक मोमेंट कर रहे थे। तो वहाँ पे स्टेज पे सैम ऑल्टमैन थे जो चैट जीपीटी के सीईओ हैं, और उनके एक प्रीवियस एम्प्लॉय हुआ करते थे जो चैट जीपीटी में पहले काम करते थे, और अब उनके राइवल बन गए, वो एंथ्रोपिक के सीईओ हैं, डैरियो एमुडाई नाम है उनका, और उन दोनों ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। तो फोटो में बड़े ऑकवर्ड लग रहे हैं। बाद में सैम ऑल्टमैन को इस बारे में पूछा भी गया था, तो कहते हैं कि मेरे लिए ऑकवर्ड था, मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या करना है उस समय। मेरा सवाल कुछ और है। कई बार ये देखा जाता है कि जब आप फियर्स राइवल्स हो जाते हैं एक दूसरे के, एक ही फील्ड में होते हैं, तो आप एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। ये क्या सही रोल मॉडल की तरह आप हैं? आप लोगों को, आप इतने बड़े हैं, लोग आपको देख रहे हैं, इज दिस द राइट वे टू बिहेव?
4: एक्चुअली क्या होता है कि हमारा एक है बीइंग और दूसरा है डूइंग। अब कभी भी जब आप राइवलरी की बात कर रहे हैं तो राइवलरी तो शब्द ही अच्छा नहीं है, बिकॉज आप दो जने कुछ डूइंग में कर रहे हैं
3: जी,
4: और आप अपनी रेस लड़ रहे हैं। You're running your own race.
3: जी।
4: और आप अपनी स्पीच से, अपने प्रिंसिपल से, अपने वैल्यूज से आप वो रेस लड़ रहे हैं। पर कभी कभी क्या होता है उस डूइंग के प्रोसेस में जिन लोगों के साथ आप होते हैं उनका कोई बिहेवियर, उनका कोई एक्शन, उनकी कोई कमी, उनके साथ का कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपके अंदर बैठ जाता है, आपके एटीट्यूड में बैठ जाता है
3: जी।
4: वो आपके एक्शन से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है।
3: हाँ।
4: एंड जो देखने वाले लोग हैं वो जो आप कर रहे हैं उससे ज्यादा देख रहे होते हैं।
3: हाँ, तो उनको नहीं पता कि इसके पीछे कारण क्या है,
4: पर दिखाई दे जाता है ना। हम रोल मॉडल नहीं भी हैं तो भी हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारी जो एनर्जी है, वो तो हर एक को फील होती है। वो किसी को एम्पावर भी कर सकती है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी, चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: आगे बढ़ने के लिए हेल्दी कंपटीशन बहुत जरूरी है. आइए इसे थोड़ा और समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है, जब आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो बहुत बड़ा है, आप कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आगे की जनरेशन के लिए बहुत बड़ा होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो आप ये नहीं चाहते हैं कि आपने जो बनाया है वो आप किसी के साथ शेयर करें. तो राइवलरी कभी इस वजह से भी हो जाती है कि उसी फील्ड में अगर कोई और है तो उससे आप ये सारी चीजें बात नहीं करना चाहते, कि कॉमन प्लेटफॉर्म पे देखे नहीं जाने चाहते. ये क्या सही है, या हेल्दी कॉम्पिटिशन होना जरूरी है?
4: सी, एक चीज होती है कि कुछ आपके एथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, या आप कह रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, इट इज अंडरस्टैंडेबल. वो सामने वाला भी समझता है कि कोई भी आप बिजनेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके कुछ सीक्रेट्स हैं, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप किसी प्लेटफॉर्म पर बोल नहीं सकते. पर किसी दूसरे के बारे में गलत अपने मन में सोचना, उनकी कमियां अपने मन के अंदर बिठा के रखना और उनके साथ भी उन्हीं चीजों का वर्णन करना, वो रिश्ते को खराब कर रहा है. आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं. लाइक ऐसे डूइंग को अलग करें, बीइंग को अलग करें. आपके बीइंग के अंदर तो जो उनकी क्वालिटीज है वो आप रख सकते हैं ना. देन क्या होगा, आप बिजनेस में भले राइवल्स होंगे, राइवल्स, आई जस्ट डोंट लाइक द वर्ड राइवल्स, बट मे बी आप कंपेटिटर्स हैं, बट रियल लाइफ में आप फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. मतलब उसमें क्या है, यू आर थिंकिंग गुड अबाउट अनदर पर्सन. रिश्ता मन में बनता है. इन योर माइंड फॉर दैट पर्सन विल क्रिएट दैट रिलेशनशिप. इट हैज नथिंग टू डू आप बाहर क्या कर रहे हैं. आप देखें, इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स आपको लिटरली कई बहुत क्लोज फ्रेंड्स दिखाई देंगे जो एक्चुअली हमेशा दो अलग टीम के अंदर खेल रहे होते हैं, पर वो कहते हैं नहीं, हमें एक दूसरे के प्रति डीप रिस्पेक्ट है, हमने एक दूसरे से हमेशा बहुत सीखा है, वो एक साथ होंगे, एक साथ चल भी कर रहे होंगे, एक साथ, दैट इज पॉसिबल.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर आप किसी के रोल मॉडल हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, स्पोर्ट्स में क्या होता है, ज्यादातर आप गेम खेलते हैं तो गेम एक दिन या पांच दिन या जो भी है 90 मिनट 70 मिनट में खत्म हो जाता है और आपको हार जीत का फैसला मिल जाता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि भाई ये गेम हारे हैं, अगला गेम जीत सकते हैं। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लेकिन बहुत बार उसी दिन पे बहुत महत्वपूर्ण या बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो इंडस्ट्री है, जो काम कर रहे हैं, वो एक लंबा दौर होता है। एक प्रोडक्ट डेवलप करने में बहुत समय लगता है, बहुत सारी मेहनत जाती है और उस पर बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ होता है। तो ऐसे केस में जब आप एक दूसरे से हाथ ही नहीं मिलाते, एक दूसरे से बात नहीं करते, आप किस तरह के रोल मॉडल बन रहे हैं और लोग आपसे क्या सीख रहे हैं?
4: वो तो अभी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि देखो लोग देख करके ही तो सीखते हैं ना। That's what I said, आप कुछ कर रहे हैं और आप बहुत सफल भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप कितने हम्बल हैं, आप कितने रिस्पेक्टफुल हैं, आप कितने काइंड और कंपैशनेट हैं, वो चीजें छिप नहीं सकती हैं। आप बाहर एक्सटर्नल लेवल पर सफल होना एक चीज है, लेकिन रोल मॉडल हम किसको बनाते हैं? रोल मॉडल डिपेंड करता है कि जब मैं भी रोल मॉडल चूज कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स देख रहा हूँ कि मैं उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ भी देख रहा हूँ। देयर कैन बी समबडी हु इज वेरी वेरी फाइनेंशियली सक्सेसफुल, नेम भी हो सकता है, फेम भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, ईगो भी बहुत हो सकती है।
3: होता है, ज्यादातर हो जाता है।
4: अभी रोल मॉडल बहुत केयरफुली चूज करना होता है। रोल मॉडल एक्सटर्नली नहीं, दोनों, आप व्यक्ति कैसा है और व्यक्ति की सफलता, दोनों चीजें हैं। व्यक्तित्व कैसा है, एब्सोल्युटली, चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, और नॉर्मली आप जो बनना चाहते हैं वैसा। रोल मॉडल चूज करने में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, यू शुड बी वेरी वेरी पेशेंट, क्योंकि फिर आप इम्प्रेस होकर उस चीज को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इन्फ्लुएंसर्स और रोल मॉडल का तो रोल ही ये होता है कि आपका हर कर्म नोटिस हो रहा है। इसलिए आप देखिए बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो फेमस लोग हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। सोसाइटी भी डिमांड करती है कि वो जब पब्लिक के सामने होते हैं तो जो उस कंट्री की मॉरालिटी है उसको वो फॉलो करे। अगर वो उस मॉरालिटी को फॉलो नहीं करते तो हैवी पेनल्टी है, हैवी फाइन्स है, हैवी मीडिया स्क्रूटिनिटी है उनको। कहीं मैंने वही गलती कोई कॉमन मैन करे और वही गलती अगर कोई सेलिब्रिटी करता है तो कई बार आजकल तो कैंसल आउट भी कर देंगे उसको। सो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या हर रोल मॉडल के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं, रोल मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमको लगता है ये ऐसा कर रहे हैं तो ये सही होंगे क्योंकि ये इतने बड़े हैं अपने फील्ड में। तो सैम ऑल्टमैन का हैंडशेक नहीं करना डैरियो के साथ, या फिर कई बार स्पोर्ट्स के फील्ड में देखते हैं कि भाई मैच के पहले या मैच के बाद में आपने हैंडशेक नहीं किया। कई बार आप देखते हैं कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ भी बोल जाते हैं एक्सेट्रा। अब आप क्योंकि इतने बड़े मॉडल हैं, लोग इतने फॉलो करते हैं आपको, उस समय आप ये नहीं देखते कि जो वो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत। आपको लगता है ये कर रहे होंगे तो सही ही होगा। तो मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ कि मैं इम्प्रेशनेबल हूँ, मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ जो भी है, लेकिन मैंने उनको रोल मॉडल माना है, मैं कैसे तय करूँ क्या सही है क्या गलत है? क्योंकि कभी कभी जो सामने वाला कर रहा है वो मुझे सही लग रहा है।
4: पहली चीज तो ये है कि जो फेमस लोग हैं उनको कई बार लगता है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। समटाइम्स यू फील हम कोई ब्रांड एंडोर्स करें, लेट्स जस्ट से अ ब्रांड भी है, आपको लगता है कि नहीं मेरा एज एन एक्टर का जो रोल है वो सिर्फ ब्रांड एंडोर्स करना है, कि ब्रांड अच्छा है नहीं अच्छा है,
3: उस पे रिसर्च नहीं करते,
4: उस पे हम रिसर्च नहीं करते, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं
3: जी।
4: आई पर्सनली फील वो सही नहीं है क्योंकि लोग आपसे प्रभावित हैं, तो हमारी भी ये कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारा कर्मा होता है ये, क्योंकि मैंने अगर किसी चीज को एंडोर्स किया और मुझे कोई फॉलो करता है तो वो ब्लाइंडली उस चीज को भी फॉलो कर लेगा
3: जी।
4: वो कहता है आप ये करते हैं, हम कहेंगे इसमें हमारी क्या गलती है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर नहीं, इन्फ्लुएंसर का मतलब ही क्या है?
3: वो इन्फ्लुएंस करता है,
4: वो इन्फ्लुएंस करता है। आपके फॉलोअर्स का मतलब ही क्या है? वो आपको
3: फॉलो
4: करते हैं, वो आपको ऊपर फेथ रखते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं। तो दैट इज वन थिंग कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसलिए कई लोग अगर आपको मिलेंगे इंडस्ट्री में जो अपने प्रिंसिपल्स के प्रति बहुत फर्म होते हैं कि हम इस चीज को एंडोर्स नहीं करेंगे, हम इस चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं खाएंगे नहीं पहनेंगे, यू मीट बोथ काइंड ऑफ पीपल।
3: बिल्कुल,
4: आप उनको कितना भी टेम्प्ट करने की कोशिश करें वो चीज नहीं करते। दैट इज वन थिंग कि उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपना रोल मॉडल कैसे चूज करें? आइए इस पर थोड़ा गौर करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरा सवाल वही था कि मैं कैसे डिसाइड करूं, वो तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अब मैं हूं, मैं इनको फॉलो कर रहा हूं, मैं क्या करूं?
4: आपका जो है फॉलो करने का, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आप उस तरह से तो अपना रोल मॉडल डिसाइड करेंगे ना। आपको सब मिल जाएंगे, आपको हम्बल से हम्बल व्यक्ति भी मिल जाएगा, इगोइस्टिक भी मिल जाएगा, कंपैशनेट भी मिल जाएगा, रिवेंजफुल भी मिल जाएगा, वायलेंट भी मिल जाएगा, पीसफुल भी मिल जाएगा। अब किसको फॉलो आपको करना है वो तो आपकी चॉइस है ना, वो तो हर कदम पर आपकी चॉइस है, आप क्या बनना चाहते हैं, दैट इज योर इंडिपेंडेंट चॉइस। अब वो चॉइस कई बार कहाँ से आती है, ये फॉलो करने से ज्यादा आप किस प्रकार के इंसान है। मुझे ऐसा लगता है कि घर की जो अपब्रिंगिंग होती है ना, आई वॉज इन अ प्रोग्राम वंस, आई टेल यू, देयर वर 60 लीडर्स उसके अंदर, एंड देयर वर लीडर्स एंड देयर वर ऑल इन द एज ऑफ 48 एंड 60, क्योंकि वो लीडर्स थे, उनके नीचे बहुत लोग काम कर रहे थे। हमारा एक वर्कशॉप सा चल रहा था जिसके अंदर एक सिंपल सा सवाल था कि आपका रोल मॉडल कौन है। देवर वेल रेड पीपल, वेल एडुकेटेड पीपल, वेल ट्रेवल्ड। आई थॉट दे गोइंग टू राइट कोई ना कोई लीडर का नाम लिखेंगे। उसमें से 58 लोगों ने जो नाम लिखा वो था या मदर या फादर। सो व्हाई एम आई सेइंग दिस, दैट इफ योर मदर एंड फादर आर अ सर्टेन वे, आपका रोल मॉडल भी वैसा ही आप दुनिया में चूज करेंगे। अगर वहां से कंपैशन आ रहा है तो आप वहां कंपैशन ढूंढेंगे, वहां पर ह्यूमिलिटी है तो आप ह्यूमिलिटी को ढूंढेंगे, वहां पर ही अगर उस चीज का बहुत अहंकार या अभिमान है तो आपको वैसा व्यक्ति अट्रैक्ट करेगा। और इसीलिए किसी चीज के नीचे जब आप कमेंट भी पढ़ेंगे ना, आपको दोनों प्रकार के कमेंट मिलेंगे। कोई व्यक्ति क्रिटिसाइज कर रहा है तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा आपने आवाज उठाई, आवाज उठाना अच्छा है लेकिन रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ होना चाहिए। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है पर उसको अच्छा नहीं बोलेगा, नीचे बोलेगा नहीं भाई, दिस इज नॉट द राइट वे। किसी को डिमीन करना, सबके सामने किसी को रिजेक्ट करना, किसी का मजाक उड़ाना, आई डोंट थिंक इट इज गुड। पर वो सेम काम को एक व्यक्ति अक्नॉलेज करेगा, एक व्यक्ति रिजेक्ट करेगा। दिस डिपेंड ऑन आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं।
3: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स ऑल.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Providing और nurturing का balance कैसे समझे? आइए इस बात को समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: ज्यादातर देखा जाता है कि जो औरतें करियर में बहुत अच्छा करने लग जाती हैं, उनसे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपके बच्चों का ध्यान कौन रखता है, व्हाट सैक्रिफाइसेस डिड यू हैव टू मेक कि आप यहां तक पहुंची, आपको क्या ये किया हुआ सही लगता है. तो ऐसा क्यों है कि औरतों से ही ये सवाल पूछा जाता है और मर्दों से नहीं पूछा जाता?
4: वो इसलिए है कि अब हमारे जो वेमेन है उन्होंने काम करना शुरू किया है. पहले समाज में देखो, कोई भी हम जब घर चलाते हैं तो उसमें दो रोल बहुत जरूरी होते हैं. एक होता है नर्चरिंग का और एक होता है प्रोवाइड करने का.
3: जी,
4: तो प्रोवाइडर का जो रोल था मना
3: वो ज्यादातर मेल की तरफ
4: पहले था. ऐसा था अगर आप ये तो अभी अभी हुआ ना, और पहले जो प्रोवाइडिंग का रोल था ना वो भी बड़ा डिफिकल्ट था.
3: हाँ, क्योंकि जंगल में जाके आपको मांस लेके आना है वगैरह.
4: ऐसा नहीं था, वुमेन को तो और कंफर्टेबल रोल दिया हुआ था हिसाब से. उस समय पर फिजिकल लेबर ज्यादा है, आपको खेतों में जाना है या जो भी करना है, तो जो हार्ड वर्क था फिजिकल लेबर था वो मेल कर रहा था और प्रोवाइड कर रहा था फैमिली के लिए, वो एक रोल प्ले कर रहा था. जो फीमेल थी उसने ज्यादातर जो रोल लिया हुआ था घर को संभालना और नर्चर करना.
3: जी बिल्कुल,
4: कोई भी रोल कम ज्यादा नहीं होता है. दोनों रोल एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है. हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक रोल को ज्यादा सुपीरियर मान लिया.
3: महत्व ज्यादा पुरुषों को दे दिया.
4: पुरुषों को नहीं दिया, रोल को दिया. आज भी हमें लगता है जो धन कमाता है ना
3: वो ज्यादा इम्पोर्टेंट,
4: वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हमने रोल को, प्रोवाइडर के रोल को, धन कमाने वाले के रोल को ज्यादा सुपीरियर कर दिया. तो हमें लगा कि अगर हम वो रोल प्ले करेंगे तो शायद समाज हमें भी उतना रिस्पेक्ट देगा, और समाज ने दिया भी.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: उदास उल्फत जी लिखते हैं कि मुझे एक प्रॉब्लम है बोलने में। मैं थोड़ा रुक रुक कर बोलता हूँ। जब किसी से बात करनी होती है तो मैं डरता हूँ। इस डर को दूर करना चाहता हूँ, कैसे करूँ?
3: कोई बात नहीं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। डर आपको इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे।
2: जी,
3: ये एक ऐसा डर होता है कि फिर वो अपनी हमें कमियों को ओवरकम नहीं करने देता है। आप अपने को अगर कहेंगे कि ठीक है, ये मेरे अंदर, मुझे नहीं पता ये कमी है कि ये कोई बीमारी है, जो भी है, इसका जो भी प्रोसेस है, आप उसको ओवरकम करें और इस चीज से परे चले जाएं कि आपको लोगों का वैलिडेशन चाहिए।
2: बिल्कुल भी नहीं,
3: पर यही हमारे अंदर होता है ना। वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अपने मन को समझा लें कि वो उड़ाते भी तो ठीक है, वैसे तो कोई अच्छा व्यक्ति
2: कभी नहीं उड़ाएगा,
3: नहीं उड़ाता है,
2: बिल्कुल भी नहीं।
3: वो ना किसी का मजाक उड़ाता है, किसी, आई मीन दे डोंट मेक फन ऑफ अदर पीपल। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये तो वो अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रहा है, they're reflecting their own संस्कार।
2: तो आप बुरा ना माने।
3: हाँ, आप बुरा नहीं माने और अपने को समझाएं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी होती है। स्टैमर आप करते हैं या आप धीरे धीरे बोलते हैं, इट इज ओके।
2: एब्सोल्युटली। और उदास, अगर आपको प्रोत्साहन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो ऋतिक रोशन के पास है। सेम डिसेबिलिटी कह सकते हैं, जो भी है प्रॉब्लम थी, और आज देखिए वो कहाँ पर हैं। और बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं मिल चुका हूँ 2-3 बार। बहुत हम्बल, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, बहुत फ्रेंडली हैं, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं।
3: जीवन में कोई आपको एक्सेप्ट करे ना करे, आपको अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए।
2: जी,
3: कोई रिस्पेक्ट करे ना करे, आपको खुद अपने को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसा व्यवहार हम अपने साथ करेंगे, धीरे धीरे लोग हमारे साथ वैसा व्यवहार करना शुरू।
2: वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और इस विषय में मैंडी हेल है, उन्होंने लिखा है कि यू ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर, शाइन ऑन एंड डेयर एनीवन to turn off the lights.
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
4: Type-C cable के साथ phone तो charge कर लोगे, खुद को कैसे charge करोगे? Mirchi Recharge Mornings, सुबह 6 से 8, only on Mirchi. It's hot.

0: morning, only on Mirchi. It's hot. Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर राज कोलकाता से लिखते हैं, हेलो रिचार्ज मंत्रा टीम, मेरा सवाल है, इस ग्रीड से भरी दुनिया में एक प्योर स्पिरिचुअल और पायस जिंदगी जीने का राज क्या है?
3: समझ। अगर आपको समझ मिल जाती है कि मेरे कर्म से मेरा भाग्य बनता है, तो फिर भले सब भी गलत कर रहे हो, आप नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो आप करेंगे उससे आपकी डेस्टिनी बनेगी, जो वो करेंगे उससे उनकी डेस्टिनी बनेगी। तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में न आकर के राइट क्या है, भगवान क्या कहता है, उस मार्ग पर
2: चलेंगे। सही बात है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello there, this is your girl Priscilla and yes baby, Mirchi Mornings has officially entered the chat. आज का weather थोड़ा सा confused हो सकता है, traffic थोड़ा सा toxic हो सकता है, लेकिन हमारी vibe एकदम मिर्ची दार है. मेरा नाम है Priscilla और मैं हूँ तुम्हारी morning buddy for next few hours. अभी फिलहाल office जा रहे हो, work from home कर रहे हो, breakfast बना रहे हो या फिर अपने कल रात के decisions के बारे में rethink कर रहे हो. जो कुछ भी कर रहे हो मेरे साथ बने रहो क्योंकि honestly यहाँ पर होने वाली है ढेर सारी गपशप, ढेर सारी बातें, तुम्हें अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स भी मिलने वाली है यहीं पर एंड साथ साथ में बीच बीच में मिर्चीदार बैंगर्स भी आने वाले हैं. दैट्स योर फेवरेट पार्ट, आई नो. ऑल्सो इफ योर बॉस आस्क्स व्हाई यू आर स्माइलिंग दिस अर्ली, जस्ट से साइड इफेक्ट्स ऑफ लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में फटाफट से मुझे अपने साथ रखो इंस्टा और एक्स पर भी. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल फटाफट से मुझे फॉलो करो एंड सुनते जाओ मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello?
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड यू आर लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स। तो सुनो, साइंटिस्ट एट द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी हैव क्रिएटेड अ टाइनी ब्रेन पावर्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। हाँ जी, टाइनी ब्रेन कंप्यूटर। बेसिकली दे कंबाइंड रियल ह्यूमन ब्रेन सेल्स विद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इनटू वन फ्यूचरिस्टिक सिस्टम। एंड द क्रेजीएस्ट पार्ट इज दैट दिस लिटिल डिवाइस कैन एक्चुअली लर्न एंड रिकॉग्नाइज पैटर्न्स आफ्टर बीइंग ट्रेन्ड लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ऑनेस्टली इफ दिस टेक्नोलॉजी गेट्स टू स्मार्ट, वन डे योर लैपटॉप माइट से आज मैंने काम करना ही नहीं, मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ। वैसे अर्ली अटेम्प्ट्स एट दिस टेक्नोलॉजी हैड वन बिग इशू, द ब्रेन cells and electronics weren't properly connected, but now researchers have built it together in a full 3D system. And somewhere हर देसी parent जो है उनके excitement का level और बढ़ गया है। वो कह रहे हैं, शर्मा जी का बेटा जो है अब तो computer बन गया है, तू कुछ मत करना। वैसे jokes about this could seriously change the future of computing, medicine and AI. Imagine machines learning more naturally, almost exactly like humans do. लेकिन hopefully they don't also learn how to leave dishes in the sink and ignore WhatsApp calls from mom, because वो तो सिर्फ human error हो सकता है। और इसी बात पर चलाते कुछ मिर्चीदार गाने, तब तक तुम जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome back to Mirchi Mornings. It's almost the end of this hour aur yahan par hum baatein karte hain weather ke bare mein. So right now it's around 48 degrees Fahrenheit outside and because of the wind it's feeling like it's 44 degrees Fahrenheit. Matlab weather jo hai wo basically aaj hamare sath catfishing kar raha hai. Dik kuch aur raha hai, actually kuch aur hai. Right now skies are mostly clear, so if you're driving to work with sunglasses and confidence, enjoy it while it lasts. Kyunki 11 baje se lekar 2 baje ke beech mein we will have partly cloudy skies and by 2 p.m. it's going to be mostly cloudy. Yani ki sky jo hai wo achanak se bolega I need to be left alone. Today's temperature will hang between 47 to 67 degrees Fahrenheit. That is pretty 6-7. Good news though is zero rain in last 24 hours and zero rain is expected in the next 24 hours too. So aaj freshly washed car can finally stop living in fear. वैसे आज का वेदर इज गिविंग पीक इमिग्रेंट लाइफ एनर्जी. काफी दिल्ली टाइप के वेदर की, स्पेशली वेडिंग सीजन वाले वेदर की फील्स दे रहा है. सो लेयर के प्लेयर बनो, कीप योर चाय इमोशनली सपोर्टिव एंड साथ साथ में अपना SPF 50++ लगाना बिल्कुल मत भूलना. एंड हाँ, पानी पीना मत भूलना जो कि तुम हमेशा भूल जाते हो. कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. और अभी तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मिर्चीदार गाने मैं प्ले करने वाली हूँ तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली विद मी, बोले तो प्रिसिला. मुझे जाकर फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर. My handle name is Mirchi Priz, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello there, my desi people. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब बारी आ चुकी है हम पता करें दुनिया में क्या चल रहा है. सबसे पहले ड्यूरिंग हिज चाइना विजिट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कॉल्ड अमेरिका अ डिक्लाइनिंग नेशन एंड ट्रंप जी ने रिस्पॉन्ड किया है इस पर कहते हुए शी वाज रेफरिंग टू द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट हिज करंट टर्म. एंड नंबर टू पर ट्रंप जी ऑल्सो स्पोक अबाउट शी जीज प्रेजेंस ऑन स्क्रीन सेइंग ही इज वेरी वेरी टॉल एंड हैज दैट काइंड ऑफ लुक हॉलीवुड वुड स्ट्रगल टू कास्ट. ऑनेस्टली इमेजिन बीइंग सो पावरफुल पीपल आर डिस्कसिंग योर बायोपिक casting before the trailer even exists. And finally, cricket se number 3 par Rohit Sharma roasted himself after scoring 25 off of 26 balls against Punjab Kings. During the Mumbai Indian dressing room speech, he joked that while everyone else was batting fast, he was busy playing test cricket. Waise ise kehte self-awareness level 3000. That's it for Mirchi Hour ka 3 for this hour with me Priscilla. Abhi mujhe follow karo Mirchi Pris ke naam se dhoono mujhe Insta aur X pe. मेरा हैंडल है वो एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: विकी जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये आपके हो
4: पास
2: क्या है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501। हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह
4: नहीं तो
2: थोड़ी ना।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my desi people. Main hoon Priscilla, tumhare saath main sun rahi hoon Mirchi Mornings. And a big win for India at the Thailand Open 2026 in Bangkok. India's power duo Satwik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty smashed their way into the men's doubles semi-finals. And not just a tiny win, okay? They defeated Japan's Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with a super solid scoreline. That's 21-12 and 21-13. Honestly, that score was less match and more respectfully demolished. Meanwhile, in women's singles, India's PV Sandhu fought hard but crashed out in the quarterfinals against Japan's Akane Yamaguchi. Sindhu actually took the first game 21-19, but Akane made a comeback and won the next two. And can we just please appreciate badminton players for a second, because one rally lasts longer than most situationships in New York City. Also, फटाफट तुम्हें याद दिला दूं कि आरके जूल्स कह रहे हैं गेट रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइजेस. जीरो लेबर चार्जेस हैं वहां पर और जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस तुम्हें पे करने पड़ेंगे. यू जस्ट पे फॉर द गोल्ड एंड डायमंड्स दैट यू बाय. तो बेसिकली तुम खुश, तुम्हारा वॉलेट खुश और ज्वेलरी पाने वाला भी खुश. तो फटाफट से आरके जूल्स पर पहुंचो अगर तुम्हें कुछ ज्वेलरी शॉपिंग करनी है तो. और फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स अगर सुनने हैं तो सुनते रहो मुझे यानी कि प्रिसिला को मिर्ची मॉर्निंग्स पर. और मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो माय बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स. और आज का दिन सीरियसली इज स्टैक्ड विद स्टार पावर. सबसे पहले आज के दिन है माधुरी दीक्षित जी का हैप्पी वाला बर्थडे. द वुमन हु स्माइल अलोन कुड फिक्स ग्लोबल सैडनेस. आल्सो यू शेयर योर बर्थडे विद ब्रिटिश टेनिस चैंप एंडी मरे. म्यूजिक लवर्स से हेलो टू ब्रायन एनो. एंड फॉर माई टॉलीवुड स्क्वाड, बर्थडे विशेस टू राम पटिनेनी. ऑल्सो बॉर्न टूडे इंडियन म्यूजिक कंपोजर संतोष नारायणन एंड एक्ट्रेस होस्ट Anusuya Bhardwaj. And Hollywood faces like Alexandra Breckenridge from Virgin River and Jamie Lynn Sigler from The Sopranos. And to everyone celebrating today, whether you're turning 21 or just turning emotionally unavailable, I hope your day is filled with love, laughter, happiness, cakes and no calories. And hey, agar birthday shoutouts bhejne hai to mujhe message kar sakte ho Insta aur X pe, mera handle hai mirchipris, that is mirchipris. And WhatsApp pe mera number hai 9033 mirchi, that's 9033 6472 4. Stay tuned and stay hot.

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: SHG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब बारी आ चुकी है सोना एंड चांदी का रेट जानने की.
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड रीडिंग एट $4,600. $4,600 पर ट्रेंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेंड कर रहे हैं, जो पिछले हफ्ते से थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड पर है. आने वाले मदर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 12 इंस्टॉलमेंट्स में ज्वेलरी घर लेके जाएं और बिना किसी इंटरेस्ट के राज ज्वेल्स की टीम को पैसे दें. ये बहुत यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन है ज्वेलरी की, जिसके अंदर आप पहली 12 किस्तें पे करने के बाद सेम क्रेडिट कार्ड दोबारा यूज कर सकते हैं नेक्स्ट परचेज की राज ज्वेल्स के साथ. सो आइए मिलके सेलिब्रेट करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं RajJewels.com के साथ. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू.
1: एंड देयर यू हैव इट, मिर्ची पर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. और अब मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब हम पता करेंगे दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। Number one per, Indian PM Narendra Modi has officially landed in Abu Dhabi, which is the capital of UAE, as part of a six-day, five-nation tour. He received a full guard of honor after landing, and the trip will also include visits to the Netherlands, Sweden, Norway, and Italy. And number two per, this one looked straight out of a Hollywood movie trailer. UAE F-16 fighter jets escorted PM Modi's aircraft as it entered Emirati airspace. मतलब कि फुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है मोदी जी को वहां पर। एंड नंबर थ्री पर, अ साई ऑफ रिलीफ फॉर नीट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अनाउंस्ड दैट कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द 21st जून री एग्जाम विल गेट एन एक्स्ट्रा 15 मिनट्स। Students will also get a week to choose exam centers, and there will be no extra exam fee charged. After all the stress around the cancelled May 3rd exam, students in India are probably reacting with a lot of relief. And that was Mirchi Hour Ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Abhi filhal mujhe follow karo Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Milchi. Escabana, buscabana, sacabana. Yabana. Murga, murga. La vieja la murga. Milchi, murga.
1: Hello.
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हू इज दिस,
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है सर? मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड नाउ वी आर हेडिंग इनटू राशि जोन नंबर वन।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, मनी मैटर्स आर कॉलिंग। एरीज आज इम्पल्स शॉपिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो, जस्ट बिकॉज इट सेज लिमिटेड एडिशन डजंट मीन योर क्रेडिट कार्ड शुड क्राई लेटर। लकी कलर फॉर यू इज वायलेट, लकी नंबर इज 18। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, द यूनिवर्स इज बेसिकली योर हाइप स्क्वाड टुडे। व्हाटएवर यू स्टार्ट नाउ कैन सीरियसली ग्रो बिग लेटर। कॉन्फिडेंस पे फुल वॉल्यूम रखो। लकी कलर फॉर यू इज सेज, लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, यू आर फीलिंग फियरलेस टुडे। And honestly, main character energy आ गई है। बस ओवर कॉन्फिडेंस में reply all मत कर देना ऑफिस ईमेल पर, समझे। लकी कलर इज टैंजरीन, लकी नंबर इज 1। कैंसर यानी कर्क राशि, योर माइंडसेट इज पावरफुल टुडे। पॉजिटिव सोचो, बोल्ड मूव्स लो और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो फॉर गॉड सेक्स। लकी कलर फॉर यू इज येलो, लकी नंबर इज 29। लियो यानी कि सिंह राशि, करियर स्पॉटलाइट इज फुली ऑन यू बेबी। वीकेंड तक कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज या अप्रिसिएशन मिल सकता है। वाओ, वॉक इन लाइक योर पुष्पा फ्रॉम पुष्पराज विथ योर बैकग्राउंड म्यूजिक प्लेइंग। लकी कलर फॉर यू इज क्रिमजन रेड, लकी नंबर इज 7। वर्गो यानी कन्या राशि, एडवेंचर मोड एक्टिवेट कर लो, ब्रेक द रूटीन थोड़ा सा। सेम ग्रोसरी स्टोर, सेम प्लेलिस्ट, सेम सैडनेस, इनफ यार, ट्राई समथिंग न्यू। लकी कलर फॉर यू इज मस्टर्ड कलर, लकी नंबर इज 31। एंड दैट्स इट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ राशि जोन। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज ऑफ कोर्स मिर्ची मॉर्निंग्स। थोड़ी सी देर में लेकर आती हूँ राशि जोन पार्ट 2, तब तक तुम सुनो मिर्ची दार बैंगर्स एंड गो एंड फॉलो मी इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there dreamers, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनोगे राशियों का हालचाल।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी तुला राशि, आज थोड़ा सा केयरफुल रहो विथ न्यू पीपल। योर इंट्यूशन इज शार्पर देन योर मॉम नोटिसिंग 1 kilo वेट गेन ऑन फेसटाइम। आज के दिन ट्रस्ट योर गट। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 22। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, यू यूजुअली लव कंट्रोलिंग द प्लान, बट टुडे लेट अदर्स टेक द लीड। सरप्राइज सरप्राइज, दे मे एक्चुअली नो व्हाट दे आर डूइंग। लकी कलर फॉर यू इज मिडनाइट लैवेंडर, लकी नंबर इज 9। Sagittarius यानी धनु राशि, बॉस यू नीड रेस्ट, योर बॉडी एंड ब्रेन आर बोथ सेंडिंग HR complaints। स्लो डाउन टुडे एंड रिचार्ज विदाउट एनी गिल्ट। लकी कलर फॉर यू इज कोरल ऑरेंज, लकी नंबर इज 14। Capricorn यानी मकर राशि, पीपल थिंक यू आर क्वाइट, बट प्लॉट ट्विस्ट, यू आर एम्बिशियस AF। समथिंग यू डू दिस वीकेंड माइट जेन्युइनली शॉक पीपल इन अ गुड वे। लकी कलर फॉर यू इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 36। Aquarius यानी कुंभ राशि, टू मेनी प्लान्स, टू मेनी टैब्स ओपन, मेंटली रिलैक्स करो यार, वन स्टेप एट अ टाइम लो, इवन योर गूगल मैप्स रिकैलकुलेट्स कैमली। लकी कलर फॉर यू इज आक्वा मिंट, लकी नंबर इज 5। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, सोशल बटरफ्लाई वाइब्स ऑन हो गई है आज के लिए। गो आउट, मीट सम पीपल, मेक सम कनेक्शन, से यस टू ऑल द प्लान्स। Someone you meet now could become super important later. Lucky color for you is rose gold. Lucky number is 27. And that's it for your Mirchi Rashi Zone number 2. Reminder, stars sirf guide karte hain, lekin asli action tumhe lena hai. Main hoon Prasala, tumhare saath mein sun rahi hoon Mirchi Mornings. Aur agar tum mujhe follow karna chahte ho Insta aur X par, to mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. It's always lovely to hear from you. Right now, Mirchi, there are bangers ka time hai. Stay tuned and stay hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And just like that, my lovely listeners, आ चुका है इस शो का अंतिम चरण, यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स का रैप अप का टाइम हो चुका है. मेरा नाम है प्रिसिला, एंड बिफोर आई साइन ऑफ, जाते जाते द इंडियन रुपी के बारे में बताकर जाती हूँ. इट्स ऑफिस

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: तेरी मम्मी की जय,

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: the phenomenon called Madhuri Dixit. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये फिनोमेना ना, पहले साइंटिस्ट बनना चाहता था। सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने एक बार क्या शेयर किया था।
1: मैं साइंस स्टूडेंट थी, अपनी माइक्रोबायोलॉजी करना चाह रही थी और मैंने सोचा था, तभी मेरा ड्रीम थी कि मैं जेनेटिक्स में रिसर्च करूंगी किसी दिन। मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट था, मैं 3 साल की थी तब से मैं कथक सीख रही हूँ। तो स्कूल में भी मैं बहुत हिस्सा लेती थी, बहुत ट्रॉफीज जीते हैं स्कूल के लिए डांस कॉम्पिटिशन्स में वगैरह। ड्रामेटिक्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मेरे जो स्कूल में मेरी सबसे बड़ी बहन है, उसकी फ्रेंड थी, उनके फादर राजश्री में काम करते थे। एक दिन उन्हें राजश्री वालों ने कहा कि जरा अपनी नजर रखना, कोई लड़की है क्या, ऐसा ऐसा रोल है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने मेरा नाम सोचा और उन्होंने आके मेरे पेरेंट्स से पूछा कि आपको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये इतना अच्छा डांस करती है। हम लोगों ने कहा नहीं, मम्मी ने कहा नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं है फिल्मों में वगैरह, क्योंकि ना तो हम किसी को जानते थे, उनको छोड़ के और किसी को जानते नहीं थे जो मूवीज में हो। लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, कहा कि मिलिए राजश्री वालों से, बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल अपने जैसे लोग हैं। और जब उनसे मिले तो कहीं कॉन्फिडेंस आया नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। और स्क्रीन टेस्ट हो गई और पता नहीं वो फिल्म हो गई।
0: वेल, ये इनकी डेब्यू फिल्म थी 1984 की अबोध। उसके बाद तो 80s में इन्होंने तहलका मचा दिया था भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जींस चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
3: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
6: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
3: कोई बोल रहा है?
4: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जींस विद चारू, ओनली ऑन।

0: ये तो आपको पता होगा कि 80s में माधुरी दीक्षित की कुछ शुरुआती फिल्में कुछ खास चली नहीं थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर जब सुभाष घई ने उनको डिस्कवर किया तो फॉर्मली प्रॉपरली उनको लॉन्च करने का प्लान बनाया। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी ने क्या शेयर किया था।
1: जब मैंने अबोध की उसके बाद श्योर नहीं थे क्या करना है, मतलब मैं स्टडीज भी करना चाहती हूँ और मैं फिल्में भी करना चाहती हूँ। आवारा बाप में जैसे सेकंड रोल था, मीनाक्षी शेषाद्री वाज द मेन एक्टर, तो 10-15 दिन का काम होता था और फिल्म यूज टू गेट ओवर, तो मैं एक्टिंग भी कर लेती थी और फिर वापस कॉलेज भी जाना शुरू कर देती थी। तो एक बार आवारा बाप के सेट पे मुलाकात हुई सुभाष जी की, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कर्मा मैं फिल्म बना रहा हूँ, उसमें एक छोटा सा डांस है आपको करना है, विल यू डू इट। तो मुझे डांस तो बहुत पसंद था, सर यस आई डू इट। तो हमने वो किया, पिक्चराइज किया और तभी सुभाष जी ने मुझे बोला कि आप ये ऐसे फिल्में नहीं करना, कि आई वॉन्ट टू लॉन्च यू अगैन बिकॉज आई थिंक देयर इज पोटेंशियल इन यू। एंड दैट्स हाउ आई गॉट अनदर चांस। आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्म फैमिली, सो वी डिडंट नो एनीथिंग एट दैट टाइम। मतलब जो इतने सारे वो एड्स भी आ गए तो मुझे कोई असर नहीं पड़ा उसका भी, मुझे पता ही नहीं था कितनी बड़ी बात थी एट दैट टाइम। आज व्हेन आई लुक बैक आई फील ओ माय गॉड ये हुआ था तभी। तो ऐसा हुआ और यस आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दीज अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम।
0: अच्छा घई साहब के प्लान के साथ गड़बड़ ये हो गई कि इससे पहले कि राम लखन रिलीज होती, विच हैपेंड इन जनवरी 1989, नवंबर 88 में तेजाब रिलीज हो गई और माधुरी ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
2: 80s में हिंदी फिल्मों के साथ सबसे बढ़िया चीज क्या हुई? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सबसे बढ़िया ये चीज हुई कि माधुरी दीक्षित की एंट्री हुई। वैसे तो उनकी डेब्यू फिल्म 1984 में आई थी, लेकिन 1988 में तेजाब के आने से तो सारा मामला ही ढंडलाइन हो गया ना। अच्छा, माधुरी को कब रियलाइज हुआ कि वो ऐसे ओवरनाइट सेंसेशन बन गई हैं, पॉपुलर हो गई हैं? सुनिए एक बार एक टेलीविजन कॉमेडी शो पर उन्होंने क्या शेयर किया था।
3: मुझे पहली बार रिकग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी, मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में। वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे हम लोग, बाहर आए तो सडनली एक बच्चा बोला, ए वो थे हीरोइन हीरोइन। तो भाग के आए दोनों, मैंने बोला अरे मुझे पहचाना। बोलता है मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो मैंने ऑटोग्राफ दिया तो एम से सिग्नेचर किया मैंने। तो दूसरे को बोलता है देख देख मैं मोहिनी मोहिनी।
2: तो ये बैड ओवर मोहिनी या बैड ओवर माधुरी वाले टाइम का आइकॉनिक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

0: माधुरी दीक्षित ने पता नहीं कितने गानों में राम जी का नाम लिया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे कि ओ राम जी बड़ा दुख दीना, या मेरा पिया घर आया ओ राम जी, या खलनायक के गाने में भी वो गाती हैं, मैं कैसी राम की गंगा हूँ, मैं तो बस नाम की गंगा हूँ। क्या ये यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए कोई साइन था कि उनकी लाइफ में भी राम नाम का कोई आने वाला है? सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी ने क्या कहा था।
1: बहुत चिढ़ाया जाता है तो लोग कहते हैं आपने अपने गानों में इतना राम जी राम जी राम जी किया है कि आपको हस्बैंड भी राम ही मिले उनका नाम भी राम ही है, तो इसलिए लोग टीज करते मुझे।
0: भाई हम तो यही कहेंगे वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई वैसे ये जोड़ी किसने बनाई थी, सुनिए माधुरी ने एक बार क्या शेयर किया था।
1: मेरे ब्रदर ने बहुत ही खुफिया किस्म से हमारी मीटिंग करवाई थी, तो मुझे भी पता नहीं था और मुझे लगता नहीं कि उनके भी फैमिली को पता नहीं था। ऐसे ही पार्टी घर में की सबको बुला लिया और वहाँ मेरी मुलाकात हुई
0: और ये मुलाकात जीवन भर का साथ बन गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। You can catch me on Instagram @rj.charu, rj.charu, इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: नाची थी।
1: तो भैये नाच गाना और खाना किसी भी सेलिब्रेशन के तंबू के लिए ये दो नहीं राइमिंग वर्ड नहीं बोल सकती ज्यादा हो जाएगा, ये दो सपोर्ट तो चाहिए रहते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जिस सेलिब्रेशन की आज हम बात करेंगे वो है हमारे ग्रोइंग अप इयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन, जो बहुत बड़ी डील होती थी। और सबसे बड़ी डील ये कि सिविल ड्रेस पहन के स्कूल जाना होता था, वो ड्रेस जो हमने घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करके या बहुत सारे टैंट्रम्स थ्रो करके हथियाई होती थी, या कई बार नहीं भी मिलती थी नई ड्रेस, आपको पुरानी शादी फंक्शन त्योहार वाली ड्रेस ही पहना दी जाती थी। लेकिन बड़ी किक मिलती थी ये सोच के कि वो पहन के हम स्कूल जाएंगे, क्योंकि स्कूल वालों को बताना होता था कि हम सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं सिविल ड्रेस में भी ठा लगते हैं। और वो सारी प्लानिंग करना कि जो टॉफीज के पैकेट बांटने हैं उनमें कौन कौन सी टॉफीज जाएंगी, पॉपिंस, एक्लेयर्स, मेलेडी, किसमी, मैंगो बाइट, या घर वाले ज्यादा मेहरबान हो जाएं तो रबर शार्पनर पेंसिल भी देते थे। और पूरी क्लास वेट करती थी कि कब कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। अच्छा, फिर अलग अलग क्लासेस में जाते थे अलग अलग टीचर्स को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि आपके क्रश की क्लास में भी जाएंगे आप, और अगर आपके बर्थडे वाले दिन क्रश एब्सेंट हो जाता था तो बड़ा दिल टूट जाता था कि हाय उसने हमें सिविल ड्रेस में देखा ही नहीं। दोस वर द डे जब बर्थडे वाले दिन स्कूल में अपनी झांकी होती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना क्या बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर। ये बेल जा रही है। हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई तो एक बात सुन, ये आपके हो
5: पास
3: क्या है?
5: आपके पास पासवर्ड होगा 33501। हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
3: किससे पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
3: भाई क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है।
5: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: मुझे बताना, ये सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना होता है।
5: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
3: अरे मैं कुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली।

ग्रोइंग अप ईयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन और उस सेलिब्रेशन का डेकोरेशन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हर घरेलू बर्थडे पार्टी में यूजुअली एक सा डेकोरेशन होता था, गुब्बारे जिनको फुला फुला के मुंह दुख जाता था, और सबसे ज्यादा मेहनत लगती थी उस गुब्बारे में जिसको फुला के टॉफियां भर के सेंटर में लटकाना होता था और बाद में फोड़ना भी होता था। और याद है वो स्ट्रीमर्स या कलरफुल रिबन्स जिनको दीवार पे सेलो टेप से चिपका के हैप्पी बर्थडे लिखा जाता था। भाई बड़ी मेहनत का काम होता था, कई बार टेढ़ा मेढ़ा सा हैप्पी बर्थडे लिखा जाता था, कई बार तो त्योहारों के बचे डेकोरेशन पीसेस भी लगा दिए जाते थे। और बर्थडे वेन्यू डेकोरेशन जो यूजुअली घर का ड्राइंग रूम होता था, उसके साथ साथ अपना डेकोरेशन भी होता था। वो ड्रेस पहनी जाती थी जो हमने बड़े टैंट्रम्स थ्रो करके, घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करके नई खरीदी होती थी। कई बार किसी फेस्टिवल, ब्याह, शादी फंक्शन की पुरानी ड्रेस भी पहना दी जाती थी। मुझे याद है मैंने एक बार अपने बर्थडे पर लहंगा भी पहना था। और सबसे इम्पोर्टेंट होती थी वो कोन शेप वाली हैप्पी बर्थडे लिखी हुई टोपी, जिसका पतला सा इलास्टिक कई बार तुड़क करके टूट जाता था तो उसको गांठ बांध के जोड़ लिया जाता था। एक नंबर के जोकर लगते थे उसको पहन के, और हमको ऐसा लगता था पता नहीं क्या राजा बाबू लग रहे हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वो चीज है जिसके लिए पूरा झमेला, पूरा सेलिब्रेशन किया जाता था, बर्थडे गिफ्ट्स। हाँ, बर्थडे में आप गिफ्ट नहीं लाए तो बर्थडे में क्यों आए? मुझे याद है बचपन में ना हमारे पड़ोस में एक बच्चा होता था जो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में लिटरली घर के एंट्रेंस पे खड़ा होता था ये देखने के लिए कि कौन गिफ्ट ला रहा है कौन नहीं ला रहा है। और अगर किसी के हाथ में गिफ्ट नहीं होता था ना तो उसको साफ साफ बोलता था कि पहले गिफ्ट लेके आ तभी खाने को मिलेगा। और याद है बर्थडे में उठा के कुछ भी गिफ्ट कर दिया जाता था, फूलदान, पेन, डायरी, टी सेट, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, मुझे तो एक बार तौलिए भी गिफ्ट मिले थे। और याद है इन गिफ्ट्स को हम यूजुअली काइट पेपर से रैप करते थे, तब इतनी फैंसी पैकिंग थोड़ी ना होती थी, कई बार अखबार में लपेट के भी दे दिए जाते थे, कई बार तो गिफ्ट में शगुन स्टाइल कैश भी दे दिया जाता था। और जिसका बर्थडे होता था वो गिफ्ट्स की वेट करता था, जो बर्थडे पार्टी में आते थे वो रिटर्न गिफ्ट की। और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता था जब कोई छोटा सा रिटर्न गिफ्ट मिलता था, कोई एक्लेयर्स या एक टॉफी। और सबसे बढ़िया चीज, सारे बच्चों के जाने के बाद उन सारे गिफ्ट्स को खोलना। हाय, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: करता हूँ।
1: ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की सबसे खूबसूरत चीज ग्रीटिंग कार्ड्स। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आज भी ग्रीटिंग कार्ड दिया जाता है, लेकिन ऐसे मस्त नहीं होता है, उस टाइम पे तो जरूरी होता था। और सबसे खास बात, हाथ से बना के दिया जाता था। कई बार बजट होता था तो आप आर्चीज गैलरी वगैरह से भी ग्रीटिंग कार्ड ले आते थे और उसपे कुछ सुंदर सुंदर सा लिख देते थे बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल के लिए। और याद है वो म्यूजिकल ग्रीटिंग कार्ड्स भी आते थे जिनको खोलते से ही टा टा टा टा टा टा बजने लग जाता था। और अक्सर ग्रीटिंग कार्ड को गिफ्ट के ऊपर पेस्ट किया जाता था सेलो टेप से। कई बार ज्यादा प्राइवेट होता था तो अलग से भी दे दिया जाता था। लेकिन वो जो हाथ से बने हुए ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे ना, फिर चाहे उनमें कितनी भी गंदी ड्राइंग की हो, कितनी भी गंदी हैंडराइटिंग हो, उनकी अलग ही बात होती थी। वो ऐसे लगता था कि किसी ने आपके लिए जेन्युइन कोई एफर्ट किया है। हाँ, आज की डेट में जिफ्स, स्टिकर्स, व्हाट्सएप मैसेजेस या AI कोई बढ़िया सा मैसेज निकाल के किसी को भेज देना वो भी अच्छा है, पर वो हाथ से बना हुआ ग्रीटिंग कार्ड, उफ उफ उफ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदगन भाई छगन भाई सांभो रे सांभो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

ग्रोइंग अप ईयर्स की बर्थडे सेलिब्रेशन की बड़ी भारी जरूरी चीज बर्थडे केक। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और मैं अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेशंस याद करूँ तो शुरुआत में केक घर पे ही बनता था। वो एक गोल मटोल सा ओवन होता था, सी थ्रू टाइप का, जिसमें ऐसे केक दिखता था फूलता हुआ, और उस केक को फिर टूटी फ्रूटी चेरीज या जेम्स जो होती थी उनसे डेकोरेट किया जाता था। उसकी आइसिंग भी घर पे ही बनती थी, वो शुगरी चीनी चीनी सी होती थी। और कैंडल्स, वो नंबर वाली कैंडल्स तो बाद में आई थी और वो महंगी भी आती थी, तो कभी आती थी कभी नहीं आती थी। जो सिंपल पतली वाली कैंडल्स होती थी उन्हीं से काम चला लिया जाता था। कई बार स्पाइरल कैंडल्स भी होती थी। एक बार तो मुझे याद है हमारे घर में किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में केक पर दिवाली की जो बची हुई कैंडल्स थी ना वही लगा दी गई थी और केक काटने के लिए चाकू, जो सब्जी काटने वाला चाकू होता था किचन का, उसी पे रिबन बांध दिया जाता था। फिर बाद में बाजार वाले केक्स आ गए, उसमें भी लिमिटेड फ्लेवर्स होते थे, चॉकलेट, बटरस्कॉच, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक फॉरेस्ट। केक यूज्ड टू बी अ सच अ बिग डील। केक कटिंग कितना इम्पोर्टेंट इवेंट वैसे आज भी होता है, और कितना जरूरी हो जाता था कि केक कटिंग से पहले बर्थडे पार्टी में पहुंचना है, नहीं तो फिर केक खत्म हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, गिफ्ट के पैसे कैसे वसूल होंगे। ग्रोइंग अप ईयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन, हाय सदके वारी जाऊं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La virva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, तो हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
3: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
3: कोई बोल रहा
4: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
11: थैंक यू।
12: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे।

0: रोज कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता था फोटोज क्लिक करना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ग्रोइंग अप ईयर्स में ये अलग एक्सपीरियंस इसलिए भी होता था क्योंकि फोटोज खींचने के लिए एक अलग कैमरा होता था जिसमें हम 24 या 36 फोटोज वाली रील डलवाते थे और कोई भी फोटो वेस्ट नहीं की जाती थी, बहुत सोच समझ के फोटोज क्लिक की जाती थी क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ फोटोज ही खींच सकते थे। और एक फोटो तो मैंडेटरी होती थी बर्थडे पे, बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय की वो फोटो जिसमें उसने वो कोन वाली टोपी पहनी होती थी जिसपे सामने हैप्पी बर्थडे लिखा होता था। क्या एक नंबर के जोकर लगते थे वो पहन के। खैर यूजुअली ये फोटोज घर का कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो क्लिक करता था और फिर वेट होता था कि ये रील्स को कब फोटोज की दुकान पे ले जाया जाएगा, इन्हें डेवलप कराया जाएगा, उन्हें एल्बम में लगाया जाएगा और जब तक अगला बर्थडे नहीं आएगा उसी एल्बम को बार बार देखा जाएगा। हाय वो डेज जब फोटोज एक्चुअली मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, यादों को सहेज के रखने के लिए क्लिक की जाती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

गोल माल, चकोर माल, तिकोना माल, हर तरह का माल फिट हो जाता था वो छोटी सी प्लेट में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ग्रोइंग अप इयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की हम बातें कर रहे हैं, और उस प्लेट की बात कर रही हूँ मैं जिसमें स्नैक्स सर्व किए जाते थे। पूरी दुनिया सिमट जाती थी उस प्लेट में। समोसा, गुलाब जामुन का रस समोसे के नीचे घुसा हुआ, समोसे की चटनी गुलाब जामुन से लिपटी हुई, केक या पेस्ट्री की क्रीम में रसे मिसे आलू चिप्स। और ऐसा भी होता था कि खा हम अपनी प्लेट से रहे होते थे लेकिन नजर दूसरे की प्लेट पे होती थी कि कहीं कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो हमारी प्लेट में नहीं आई, उसकी प्लेट में है। और अगर ऐसी कोई आइटम होती भी थी तो ही करते हुए आंटी के पास जाते थे और बोलते थे कि भाई बाकी सब तो मिल गया, एक वो नहीं हमको मिला, वो भी प्लीज दे दो। और कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो कोला, लाइम, ऑरेंज, ये फ्लेवर्स तो होते थे। कई बार रसना रूह अफजा भी टिका दिया जाता था, चाय कॉफी भी पिलाई जाती थी कई बार। हाय, उस कागज की प्लेट के आइटम्स का जो स्वाद होता था ना, वो स्वाद लाइफ में कहीं और है नहीं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ग्रोइंग अप इयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशंस, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनका मेन हिस्सा होते थे गेम्स एंड एक्टिविटीज। एक तो भाई टेप रिकॉर्डर पे कसेट लगा के डांस किया जाता था, सारे बच्चे अपने मूव्स दिखा रहे होते थे, उनको लगता था बड़े कूल हैं। कुछ के होते भी थे, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम के हिट गानों की मिक्स टेप चलाई जाती थी। फिर गेम्स होते थे जैसे ट्रेजर हंट, पासिंग द पास। मैंने तो अपने बर्थडे पे स्टापू भी खेला हुआ है, रस्सी भी कूदी हुई है, और दुनिया में सारे बर्थडे की यूनिवर्सल गेम म्यूजिकल चेयर, सारे घर की कुर्सियां उठा के गोले में सजा दी जाती थी। एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी म्यूजिक चलाने की, और कुछ बच्चों का ना साइड में अलग से कोई गेम चल रहा होता था। हाय, ग्रोइंग अप इयर्स की वो बर्थडे सेलिब्रेशंस और वो गेम्स, वो एक्टिविटीज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हिट मशीन है ये।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड आफ्टर डिलीवरिंग बैक टू बैक 100 करोड़ की हिट्स विद ड्रीम गर्ल 2 एंड थामा, आयुष्मान खुराना अब अपने कॉमेडी हिट रन को कंटिन्यू करने वाले हैं उनकी आज रिलीज हुई फिल्म पति पत्नी और वो दो के साथ। बाकी इस फिल्म में आयुष्मान के अलावा वामिका गब्बी, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान भी नजर आ रही हैं। एंड अभी तक का जो भी ओवरव्यू आया है अबाउट द मूवी एक्चुअली इंडिकेट्स कि धीरे धीरे ही सही ये फिल्म भी हो सकता है 100 करोड़ क्लब में शामिल हो ही जाए। अब देखो आयुष्मान खुराना की फिल्मोग्राफी अगर देखें तो उनकी हर दूसरी फिल्म आज के डेट में हिट ही साबित हुई है एंड दैट इज द रीजन पति पत्नी और वो दो ये नाम सुनने के बावजूद, इनफिडेलिटी का कॉन्सेप्ट दिमाग में आने के बावजूद आई एम इंट्रीग्ड अबाउट इट, क्योंकि आयुष्मान ने तो एक इंटरव्यू में क्लैरिफाई भी किया था कि यार ये फिल्म दिखने में भले ही शादी और अफेयर्स की कहानी लगे बट इट इज वे बियॉन्ड दैट। सो द डिसीजन इज योर।

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ja bana. Murga, murga. Na vjet bala murga.
1: Milci, murga. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस
1: कौन बोल रहा है
2: ये और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
1: क्या मजाक चल रही है
2: क्या मजाक चल रहा है ये सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
3: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू
1: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना हिट

यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर अनिल शर्मा ने अर्जुन रामपाल को एक एक्साइटिंग रोल ऑफर किया है, वो भी एक विलेन का। सो बेसिकली धुरंधर के बाद से अर्जुन रामपाल ने अपनी फीस को बढ़ा दिया है एंड दस ही हैज बीन ऑफर्ड 6 crores फॉर दिस एक्ट। फिल्म का नाम है अर्जुन नागा, जिसमें उत्कर्ष शर्मा एज द प्रोटैगनिस्ट नजर आएंगे एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गो ऑन द फ्लोर्स दिस संडे यानी May 17th इन बॉम्बे। बाकी अर्जुन रामपाल इस ऑफर को लेंगे या नहीं वो पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो जैकी श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म का नाम है, जिसमें वो एक सुपर हीरो दादाजी के रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर इज आउट एंड ट्रेंडिंग एंड भाई 29th ऑफ मे का इंतजार मैं तो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो बच्चा अभी भी छुपा हुआ है ना, वो बहुत टाइम बाद किसी ट्रेलर को देख के ऐसे खुश हुआ है। बिकॉज दिस मूवी ब्लेंड्स childhood fantasy, family emotions, aliens and superhero chaos into a fresh big screen entertainer. तो देखते हैं हमारे इंडस्ट्री के फ्लाइंग जट के पापा जी कितना कमाल करते हैं। नेहा धूपिया और उनके हस्बैंड अंगद बेदी हैव स्टार्टेड अ यूट्यूब नॉन फिक्शन सीरीज जिसका नाम है डबल डेट, जिसकी शुरुआत हुई है नेहा धूपिया के यूट्यूब चैनल पे। देखो सीरीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है, जहां सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस के साथ साथ फन गेम्स होंगे, कैंडिड मोमेंट्स होंगे एंड प्लेफुल चैलेंजेस भी होंगे, विच इज गोना हैपन नॉट जस्ट विद द कपल्स ऑफ द इंडस्ट्री बट सिस्टर्स, ब्रदर्स, वैसे वैसे कपल्स एज वेल। खैर अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: भाई ये नहीं देखा तो क्या ही देखा।
1: OTT एंड चिल।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। एंड यस, उस सीरीज की बात करना चाहती हूँ जिससे मैंने काफी ज्यादा रिलेट किया। आई एम टॉकिंग अबाउट सपने वर्सेस एवरीवन, जिसका सीजन 2 अभी हाल फिलहाल आया है। एंड माइंड यू, इस सीरीज के ड्रॉप होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको IMDb पे 9.4 की रेटिंग मिली है। मतलब आप सोचो, 10 में से 9 इंसान तो इसको अल्टीमेट लेवल पे पसंद कर ही रहा है। तो अगर ओवरव्यू दूं अबाउट द सीरीज, जैसा कि नाम बताता है, सपने वर्सेस एवरीवन, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोटैगनिस्ट्स हैं और उनके सपने हैं और उसके बीच में बहुत सारी ऊंच नीच होती है। और एक जो विलेन है इस सीरीज के, आए हाय हाय, मामा बोले तो कुकरेजा, विच इज प्लेड बाय विजयंत कोहली। वेल, आई बी इन कॉन्वर्सेशन विद हिम इन अ वाइल। तो अगर आपको इस सीरीज के बारे में ओवरव्यू चाहिए, विजयंत कोहली एज एन एक्टर को जानना है और उनके साथ कुछ फन गेम का हिस्सा बनना है, देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे कुछ ही देर में यहीं पे मिलेंगी। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: श्रुति
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
2: मिर्ची में ट्यून्ड इन हो आप, और जब से भाई OTT आई है तब से तो कंटेंट को लेके जो खूबसूरत सी बारिश हम ऑडियंस के ऊपर होती है कि क्या ही बताऊं। और अब से कुछ दिनों पहले Amazon Prime पे एक सीरीज आई, बेसिकली उस सीरीज का सेकंड सीजन आया। आई एम टॉकिंग अबाउट सपने वर्सेस एवरीवन। और आज इस सीरीज के ही विलेन साहब, बोले तो कुकरेजा जी, बोले तो मामा, इज इन द मिर्ची स्टूडियो हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद मी। ही इज नन अदर देन विजयंत कोहली, हु इज अ मल्टीफेसेटेड एक्टर। इन्होंने अपने इमोशन से हमें रुलाया भी है, कभी हंसाया भी है, और इस सीरीज में पर्टिकुलरली ये काफी डरा रहे हैं। सो वेलकम टू द शो सर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे मिर्ची स्टूडियो की हॉट सीट की हॉटनेस और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
3: थैंक यू श्रुति, थैंक यू। मुझे तो ऐसा लग रहा है रुला देगी तो अभी शुरुआत में ही, मतलब इतने मल्टी फेसेटेड और जाने क्या क्या। एनीवेज हां, गुड गुड टू हियर यार, अच्छा
2: सर,
3: लग रहा।
2: वो आपकी जेनरोसिटी है कि आप बस ऐसे बोल रहे हो, नहीं तो पूरी दुनिया जान रही है, आपके बहुत सारे चेहरे देख लिए हैं लोगों ने अभी तक।
3: पीपल आर बीइंग काइंड यार दिस टाइम अराउंड। आई मीन आई एम रियली हैप्पी दैट दे हैव सीन दिस साइड आल्सो, बिकॉज अभी तक जो हो रहा था वो स्वीट पापा, क्यूट मामा, प्यारे भैया, नोने से चाचू, पुकी अंकल, वो सब चल रहा था। तो अभी उसको ब्रेक करने का टाइम था, सो लकीली दिस थिंग केम इन एंड हो रहा है, मतलब कहीं कुछ ठीक ही हो रहा है लग रहा है।
2: सर ऑनेस्टली दिस इज एन अंडरस्टेटमेंट दैट यू आर गिविंग कि ठीक ही हो रहा है। मेरे हिसाब से तो अव्वल हो रहा है, सुपर से भी ऊपर हो रहा है, एंड जस्ट बवाल ही मचा रहे हैं आप। सो वील कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन विद विजयंत कोहली सर अबाउट सपने वर्सेज एवरीवन एंड डेफिनेटली अबाउट हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। अभी के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पर इस कॉन्वर्सेशन को वापस कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hi, ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: विकी जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तो एक बात सुन, ये आपके हो
4: पास
2: क्या है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: मुझे बताना, ये सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना होता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स अ

0: प्रेजेंट में इतना धांसू काम कर रहे हैं तो फ्यूचर की बात तो बनती है यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: विजय बिट्टी उन्हें नो आप एंड आज आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद विजयंत कोहली सर जो सपने वर्सेस एवरीवन के विलेन बोले तो मामा बोले तो कुकरेजा बने हैं। सो सर बहुत सारी बातें आपके प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स की तो हो गई बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? आई एम पर्सनली वे टू एक्साइटेड टू नो अबाउट इट ऑल, प्लीज इलैबोरेट।
3: सो इफ आई एम अलाउड टू टॉक आई मीन आई विल टॉक अबाउट दोस जो अनाउंस हो चुके हैं। 22 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है मेरी सिस्टम, इट्स ऑन अमेजॉन प्राइम ओनली। सोनाक्षी लीड है, आशुतोष गवारकर सर है, ज्योतिका है, मैं हूँ, बहुत अच्छी कास्ट है, उसमें नेगेटिव रोल है मेरा। देन देयर इज अनदर फिल्म, ब्यूटीफुल फिल्म कॉल्ड आवारापन, आवारापन 2 इट्स अ ह्यूज फ्रेंचाइजी, आई एम
0: वेटिंग फॉर इट।
3: 14 अगस्त को वो रिलीज हो रही है, उसमें नेगेटिव पार्ट है, उसमें भी मेरा। देन देयर इज अ फैंटास्टिक स्टोरी कॉल्ड पारिवारिक मनोरंजन विद पंकज त्रिपाठी एंड आदिति राव हैदरी, ब्रिजिंदर काला ने लिखी है फिल्म, अली अब्बास जफर ने प्रोड्यूस करी, मेरे दोस्त हैं अली। आउट एंड आउट कॉमेडी रोल है मेरा, बिल्कुल ही कॉमिक है एकदम उसके अंदर। देन देयर इज अनदर फिल्म कॉल्ड लव लॉटरी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, देहरादून में सेट है, उसमें बहुत इमोशनल रोल है मेरा, अक्षय ओबेरॉय इज द लीड, अक्षय ओबेरॉय का मैं मेंटोर बना हूँ उसमें, आई रन अ कैफे इन देहरादून, नॉट रिवीलिंग मच। एक और फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, पार्ट छोटा है बट बड़ा इंपॉर्टेंट, आई एम डूइंग स्पिरिट विद प्रभास एंड तृप्ति एंड विवेक ओबेरॉय। तो आई मीन दीज आर द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर लाइंड अप, अभी हैं काफी चीजें और भी हैं,
0: मतलब अभी ऑलरेडी 5-6 चीजें जो अनाउंस हो चुकी हैं वो आपने गिना दी एंड उसके आगे भी बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जो अभी अनाउंस नहीं हुआ है एंड यू आर कीपिंग इट अंडर द कर्टन्स, बट यस आई एम वे टू एक्साइटेड फॉर इट ऑल। वेल मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद एक्टर विजयंत कोहली जिनसे अपनी बातचीत आगे कंटिन्यू रखूंगी बिकॉज वी आर गोना प्ले द बॉलीवुड चेन गेम विद हिम एज वेल, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल, टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: महाभारत के कंस मामा को कंपटीशन देने वाले से हो रही है बातचीत।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: Well, he is none other than विजयंत कोहली, जिन्होंने सपने वर्सेस एवरीवन में मामा बोले तो कुकरेजा का रोल प्ले किया है। एंड सर, एक चीज जो बहुत एडमेंटली उभर के बाहर आती है इन द सीरीज इज द जुगलबंदी, जो राइम सिचुएशन चल रहा होता है, तो हर सीन में ये देखने को मिला है। तो मैंने सोचा एक गेम तो इस पे भी बनता है यार। सो मैं आपको कुछ लाइनर मारूंगी, आपको वो लाइन्स कंप्लीट करनी है, बट यू विल हैव टू मेक श्योर दैट दे राइम।
2: ओके,
0: सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन इज अंडी मंडी शंडी।
2: ओके, अंडी मंडी शंडी, मामा है बहुत घमंडी।
0: वो तो है। फॉर दैट यू हैव टू वॉच बोथ द सीजंस, मेरी बग्गी मेरा घोड़ा।
2: मोहब्बत बहुत कम, गुस्सा थोड़ा थोड़ा।
0: गुड गुड, मैं भी चंगा, मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, मेरा मामा
2: हमेशा करे दंगा।
0: ओके, नेक्स्ट वन इज डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक।
2: जिमी जो पैसे कमाता है मुझे लगता है बिल्कुल फेक।
0: मतलब यहाँ इंटरव्यू में भी जिमी और मामा की रंजिशें बाहर आ रही हैं। एनीवे, ये गेम यहाँ खत्म तो हो गया, लेकिन एक और गेम बाकी है जिसमें हम चेक करेंगे कि भाई विजयंत कोहली, हु इज एन अल्टीमेट एक्टर, क्या वो अपनी इंडस्ट्री को भली भांति जानते हैं। बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल्ड टिल द न्यू स्टेडियम। मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स ऑल।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: क्या इंडस्ट्री में काम करने वाले इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से जानते हैं?
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: आओ ना साथ मिलके इसका पता लगाते हैं, बिकॉज बाबू मोशा, इट्स टाइम फॉर फाइंडिंग मिर्ची फिल्म ची, बट दिस टाइम इनटू अ सेलिब्रिटी, बिकॉज आज आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद विजयंत कोहली सर, एंड रिसेंटली उनकी सीरीज आई है सपने वर्सेस एवरीवन का सीजन 2। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन। सर, बेसिकली मैं अपने शो पे हर दिन एक मिर्ची फिल्म ची ढूंढने की कोशिश करती हूँ। आई प्ले अ गेम विद द ऑडियंस और मैं उनसे बॉलीवुड का एक सवाल पूछती हूँ, उसका सही जवाब देने पे उनसे फर्दर लाइन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं।
2: ठीक है,
0: शैल वी स्टार्ट?
2: या या श्योर।
0: ओके, रणबीर कपूर की वाइफ का नाम?
2: आलिया।
0: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो किडनैप होती हैं?
2: हाईवे।
0: हाईवे के मेल लीड का नाम?
2: रणदीप।
0: रणदीप हुडा की फर्स्ट बायोपिक कौन सी थी?
2: सरबजीत।
0: ग्रेट। सरबजीत में उनकी बहन का रोल किसने किया था?
2: ऐश्वर्या
0: राय। और सलमान खान की फर्स्ट फिल्म टुगेदर?
2: हम दिल दे चुके सनम।
0: ग्रेट। हम दिल दे चुके सनम के सेकंड एक्टर का नाम?
2: हाउ कैन आई फॉरगेट, हां, अजय।
0: अजय देवगन की फिल्म जिसमें वो फोर सीटर बाइक चलाते हैं?
2: गोलमाल।
0: ओह, गोलमाल का कौन सा हीरो मुन्ना भाई MBBS में भी नजर आया है?
2: अर्शद भाई।
0: अर्शद वारसी की फिल्म जिसमें वो लॉयर बने थे?
2: जॉली LLB।
0: जॉली LLB 2 में कौन से हीरो थे?
2: अक्षय सर।
0: अक्षय कुमार की वाइफ इन गुड न्यूज
2: मूवी? करीना।
0: करीना की फिल्म जिसका डायलॉग है गुड लुक्स एंड गुड लुक्स?
2: कभी खुशी कभी गम।
0: कहीं तो रुक जाओ सर। कभी खुशी कभी गम में अडॉप्टेड बेटा कौन बना है?
2: ऋतिक।
0: फिर से
2: शाहरुख सर। शाहरुख सर, ऑफ कोर्स।
0: कोई नहीं, बट स्टिल यू आर दी ओजी मिर्ची फिल्मची, हम बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द मिर्ची स्टूडियो।
2: थैंक यू सो मच।
0: कुछ जो जाते जाते आप बोलना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए?
2: प्लीज वॉच सपने वर्सेस एवरीवन। देखो, बहुत सुंदर शो है, बहुत खूबसूरती से बना हुआ है, बहुत मेहनत लगी है हम लोगों की और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इट इज करेंटली 9.4 ऑन IMDb। जाओ IMDb पे उसको वोट करो अगर अच्छा लगे, ना लगे।

दोस्तों, कभी नोटिस किया है फ्राइडे का नाम ही ना एक छोटी सी खुशी दे देता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज मॉर्निंग से ही ना एनजी रोड्स पर एक अलग सी एनर्जी थी। लोग ट्रैफिक में भी स्माइल कर रहे थे। कॉफी शॉप्स में बरिस्टा बिना पूछे एक्स्ट्रा फोम दे रही थी और ऑफिस में वो फेमिलियर सेंटेंस सुनाई दिया, लेट्स कीप इट लाइट टुडे। आहा, फ्राइडे का चार्म ही ऐसा होता है दोस्तों, इट डजंट प्रॉमिस अ ब्रेक बट इट प्रोमिस अ होप ऑफ अ ब्रेक। और आज का दिन ना एक रिमाइंडर होता है कि हम सब ना थोड़ा सा ब्रीथ कर सकते हैं खुद के लिए। और वीकेंड आने से पहले का ये फ्राइडे का जो मैजिक है ना, वही तो लाइफ को थोड़ा सा और फिल्मी बना देता है। तो चलिए इस मैजिक को एंजॉय करते हैं विद फ्राइडे स्पेशल सॉन्ग्स। वैसे आप ही मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट फ्राइडे स्पेशल सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए इस खूबसूरत शाम को सेलिब्रेट करने के लिए राइट हियर ऑन मिर्ची ये अगला गाना।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा?
3: रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है इसमें, कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर इसमें।
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा
9: है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं। अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर ज़ोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और ज़ोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीति चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट
1: विद मिर्ची, फ्रेश माल।
2: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा, शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों। मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज हंगामा आ रहा है एक ग्रैंड हैवी इमोशन सॉन्ग के पीछे से। जी हां, हम सबका फेवरेट डोला रे डोला। यार जब आप डोला रे डोला देखते हो तो लगता है कि बस ग्रेस, रिदम और शान ही शान है, क्योंकि माधुरी और ऐश्वर्या का डांस और प्योर पोइट्री है। पर पर्दे के पीछे एक सीन फुल पावर कंजम्पशन मोड में था। जी हाँ, ये गाना इतने बड़े सेट पर शूट हुआ था, इतनी ज़्यादा लाइटिंग और इतने जनरेटर्स के साथ कि पूरी यूनिट मोस्टली रात को ही काम करती थी और लाइट्स इतनी हैवी थी कि मुंबई के इवेंट वालों को जनरेटर्स मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि देवदास के सेट ने ऑलमोस्ट सब कुछ बुक कर लिया था। मतलब देवदास का जो दर्द था ना, वो स्क्रीन पे तो चल ही रहा था और जो भी शादी वाले लोग हैं उनका दर्द रियल ग्राउंड में दिख रहा था, क्योंकि जनरेटर्स ही नहीं मिल रहे थे। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना जब इमोशंस बड़े होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ब्लॉकबस्टर लेवल का होता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे की फिल्मी हंगामे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जी मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं अगला हॉट सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स

0: Milci. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Murga, murga. Na vidvala, murga. Milci, murga.
1: Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहा है मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़िया। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: शुक्र करो शुक्रवार आ चुका है दोस्तों। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बदलता मौसम, बदलते वीकेंड के प्लान्स और बदलते मार्केट कंडीशंस, ऐसे में फर्स्ट टाइम होम बायर्स, सेकंड टाइम होम बायर्स को क्या करना चाहिए ऐसे बदलते हालातों में, क्योंकि यार मॉर्गेज रेट्स भी तो बदल रहे हैं। तो वही सारी डिटेल्स हमें देने आए हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: शुक्र करो शुक्रवार है भाई बहनों, मैं हूं आपका दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। गुड न्यूज, वेदर इज वार्मिंग अप एंड द यूएस मार्केट स्टंबल एज ट्रेजरी यील्ड्स राइज ऑन इन्फ्लेशन फियर्स एंड मॉर्गेज रेट्स ट्रिगर अप। मॉर्गेज रेट्स कंटिन्यू देयर स्टीप क्लाइम दिस वीक एंड फोर्सिंग मोर वुड बी बायर्स बैक टू द साइडलाइंस। द शार्प अपटेक इन रेट्स हैज स्क्वीज्ड होम बायर्स डिमांड, ड्राइविंग इन्फ्लेशन वेरी होम बायर्स टू लोअर देयर बजट्स और अबैंडन देयर परचेसिंग प्लान्स। Well, friends, it's a good time for buyers in the market to negotiate sales before rates further erode their buying power. There are still few homes for sale. All combined, these things are dampening the market. Well, friends, advice is free. Pre-approval is free. Buying your dream home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate 6.25%, 20-year fixed mortgage rate 6.125%, 15-year fixed mortgage rate 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Listeners, remember, with interest rates on rise, credit card payments, car payments, and payments on home equity loans will go up. And during this time, the best thing you can do is debt consolidation. If you have equity on your home, home mortgage rates are the cheapest. Remember, if you are closing debt consolidation by refinancing, we can offer you zero closing cost refinance option. So once again, friends, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful weekend. Thank you very much. Bye-bye.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के? नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए। अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच। तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार। लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन, और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mircii. Fresh Mal.
1: देसी स्वैग और हाई एनर्जी डांस वाइब के साथ सुनो, विया करवा दो जी।

इस गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विया करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी

इस ट्रायो का यूथफुल लिरिक्स ने इस एल्बम को सुपर डुपर हिट बना दिया था, और इतना ही नहीं, बीबीसी एशिया के टॉप 40 में इंक्लूड किया था एज अ ट्रेंड सेटर एल्बम। और मुझे तो लगता है कि अगर कंटेम्प्रेरी वाइब आज भी चाहिए ना, तो ये एल्बम कटिंग एज था, विच वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। 2001 में आया था, लेकिन 2025 में भी आज भी इसके गानों पर ट्यून इन कर सकते हो। तो आप भी मुझे बताइए, विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिल चाहता है एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI, और कहीं ना जाइए, क्योंकि इस एल्बम के गानों के बारे में बहुत ही खास बातें करने वाले हैं हम आज राइट हियर ऑन द शो। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है माइलस्टोन एल्बम दिल चाहता है के बारे में, जो रिलीज हुई थी 2001 में और जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री का साउंडस्केप ही चेंज कर दिया। डायरेक्टेड बाय शंकर एहसान लॉय, जिन्होंने यार अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, डिड गेरो डू आयरिश इन्फ्लुएंसेस के साथ में

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए ले चलते हैं आपको 2001 में जब दिल चाहता है रिलीज हुई थी। और यार वो सिर्फ फरहान अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू ही नहीं थी, लेकिन एक ऐसा एल्बम बन गया था, एक ऐसा साउंड ट्रैक बन गया था जो टाइमलेस था। और शंकर एहसान लॉय का ये जो साउंड ट्रैक था उसने धमाका किया था, स्पेसिफिकली विद द टाइटल ट्रैक दिल चाहता है। क्योंकि यार दिल चाहता है सुनते ही ना दिमाग में गोवा के क्लिफ्स, रोड ट्रिप्स और केयर फ्री दोस्ती ना फ्लैश हो जाती है। और ये सॉन्ग वैसे तो सिडनी के बूंदी बीच और चपोरा फैट गोवा, इन दोनों लोकेशंस पे शूट हुआ था, लेकिन ये इकलौता गाना ऐसा है जिसके वजह से गोवा टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ था। क्योंकि इतने सारे दोस्तों ने प्लान कर लिए थे कि यार चलो गोवा चलते हैं। हाँ, कुछ प्लान सक्सेस हुए थे, कुछ प्लान फेल हुए थे, लेकिन प्लान तो सब ने बनाए थे। तो जी हाँ, ये सिर्फ एक गाना नहीं, लाइफ का मिशन स्टेटमेंट बन चुका था, लिव फ्री लव रियल एंड लाफ लाउडर। तो चलिए आपके लिए प्ले करते हैं दिल चाहता है। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम ऑफ योर्स। टेल मी ऑन इंस्टा आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए गोवा की यादें ताज़ा करते हैं विद दिस दिल चाहता है। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskra bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Burka, burka. Na vidit bala burka.
1: Mirci burka. Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये आपके
3: पास
1: है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

मॉर्निंग सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका फैशनेबल फ्राइडे में। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन आवर शुरू हो चुका है और गोल्डन आवर की खास बात यही होती है कि हमारे साथ जुड़ते हैं एक गोल्ड एक्सपर्ट बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स इन आवर स्पेशल सीरीज गोल्ड डिकोडर सीरीज, जहां होती है थोड़ी चमक थोड़ी

0: दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो, स्टर्लिंग्स हो या रुपीज हो, आप कभी भी जाके किसी भी शहर में अपने ज्वेलर को बेच सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और आपका नुकसान ना के बराबर होना है। तो लॉकर के अंदर पड़ी हुई पुरानी ज्वेलरी को निकाले, राज ज्वेल्स के कैरेटोमीटर पर अपना गोल्ड टेस्ट कराएं और नए डिजाइन के गहने, नए फैशन के गहने, ओनली एक्सचेंज ऑफ लेबर चार्ज पे, फुल वैल्यू गोल्ड की आपकी वापस मिले। आ जाइए राज ज्वेल्स के साथ, गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
1: थैंक यू बॉबी जी। तो देखिए दोस्तों, आपने एक्सपर्ट से ही सुन लिया है। फैशनेबल फ्राइडे में अगर आप चाहते हो कि अपना जो पुराना गोल्ड है, पुराने डिजाइन है, उसको रिवैम्प करना है, तो इट्स वेरी इजी। आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com और अपने ऑप्शंस चेकआउट कीजिए। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कोई भी कुछ भी कह ले, अगर कोई भी ऑफिस पार्टी हो और डीजे ने अगर कोई कहे नहीं बजाया, तो इज दैट पार्टी इवन अ पार्टी? जी हाँ, कोई कहे कहता रहे फ्रॉम दिल चाहता है आज का बस टॉपिक और आज का बस सॉन्ग, क्योंकि दिल चाहता है 2001 में जो रिलीज हुई थी सुपर डुपर हिट एल्बम थी, विच वॉज कंपोज बाय शंकर एहसान लॉय। और इसी का एक सुपर डुपर हिट गाना विच इज कोई कहे कहता रहे, जो हर पार्टी की जान बन गया था यार। वैसे तो यार इस सॉन्ग की एनर्जी ऐसी थी कि शूट के दौरान भी पूरा का पूरा क्रू डांस ही कर रहा था, एंड दैट टू ऑफ कैमरा। तब फरहान अख्तर ने बोल दिया था, यार दिस वॉज द ओनली सॉन्ग वेर वी डिडंट नीड बैकग्राउंड डांसर, क्योंकि सब खुद ही ग्रूव करने लगे थे। तो यार मूड अगर लो हो या वीकेंड वाइब चाहिए, तो ये गाना इज द अल्टीमेट पिक मी अप काइंड ऑफ सॉन्ग। तो आपका भी अगर फेवरेट गाना है ये, तो मुझे जरूर बताइए। या फिर ये जो क्लासिक आइकॉनिक एल्बम है विच इज दिल चाहता है, उसका आपका फेवरेट गाना कौन सा है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए ये अगला गाना कोई कहता रहे, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बातें हो रही है 2001 के एल्बम की, दिल चाहता है कि, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम रेशमा हिंगे, जो कि रहती है एडिसन में। यार इनको जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और तब जब ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, तब यार लगता ही नहीं था कि ये गाना है। मतलब लगता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और प्रीति जिंटा ने एक बहुत ही प्यारा सा मोनोलॉग बोला था इस गाने के जस्ट थोड़ी देर पहले कि यार लव तो लॉजिकली होता है ना, मतलब लव में थोड़ी ना लॉजिक यूज़ होता है। तो कुछ ऐसा ही कहना है रेशमा हिंगे का भी, वो भी यही एग्री करती है प्रीति जिंटा के जो भी इन गाने के बोल है उनके साथ कि यार लव तो दिल से होता है, लव थोड़ी ना लॉजिकल होता है। तो जी हाँ, चलिए ये गाना बजाते हैं रेशमा जी के लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट अनदर एल्बम, हिट एल्बम जो यार बहुत पुराना है लेकिन आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए दिल चाहता है का जाने क्यों लोग प्यार करते हैं रेशमा जी की रिक्वेस्ट पर राइट योर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों आज का ऑडियंस सिंपल नहीं है, ट्रेलर देखते ही रिव्यू रेडी होता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और इसीलिए आज बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एक्सपेक्टेशन वर्सेस डिलीवरी। मतलब हमने देखा है बिग बजट होने से फिल्म हिट नहीं होने वाली या फिर छोटी फिल्म भी फ्लॉप नहीं होने वाली। ऑडियंस तो अब स्टोरी देखते हैं, ऑथेंटिसिटी फील करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं इज इट वर्थ माई टाइम टू गो टू द थिएटर और नॉट। और इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी मूवी हो, कितने भी बड़े नाम हो, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, सिर्फ बड़ा मत बनाओ, दिल तक पहुंचाओ, यही ऑडियंस का कहना है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपको क्या लगता है बॉलीवुड को अब क्या इंप्रूव करना चाहिए, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, कास्टिंग या मार्केटिंग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vie de la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: था? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, हर शहर का ना अपना एक मौसम होता है और हर मौसम के साथ एक खास याद जुड़ी होती है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मौसम की बातें हो रही है तो यार, किसी को मौसम के नाम से ना मुंबई की बारिश याद आती है, भीगी सड़कें, कटिंग चाय और वो हल्की सी रश वाली फीलिंग। तो किसी को दिल्ली की सर्दी याद आती है, फॉग, स्वेटर्स और धूप सेकने वाली मॉर्निंग्स। और किसी को अपने होम टाउन की शाम, जहाँ हवा धीमी चलती थी और वक्त भी। तो तब याद आता है ये गाना जमाना लागे, जब वो लाइन आती है ना कि तुम्हारे शहर का मौसम, तो लगता है कि किसी एक जगह का नहीं, एक एहसास का जिक्र हो रहा है। क्योंकि सच तो यही है दोस्तों कि शहर बदल जाते हैं पर उनके मौसम दिल में रह जाते हैं। तो आप भी बताओ कि आज के मौसम के हिसाब से आपको किस शहर की याद आ रही है। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि जिस भी शहर की याद आ रही हो, ये गाना आपको शहर तक जरूर लेके जाएगा। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: with Priscilla.
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग।

0: तो बॉलीवुड का लैंडस्केप ना धीरे धीरे चेंज हो रहा है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पहले ना एक फॉर्मूला होता था, बिग स्टार, बिग सॉन्ग्स, बिग रिलीज। आज ना इंडस्ट्री थोड़ा ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो चुकी है, क्योंकि एक्टर्स भी डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्राई कर रहे हैं और डायरेक्टर्स भी यूनिक स्टोरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है, तो सिर्फ ग्लैमर नहीं, कॉन्टेंट भी डिमांड करती है। और शायद इसी वजह से कुछ फिल्म थिएटर में धमाका करती है और कुछ OTT पे कल्ट फॉलोइंग बना लेती है। यार ये इंटरेस्टिंग फेज है जहां बॉलीवुड एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मल्टीपल लेन्स में ग्रो हो रहा है। और सच कहूं तो जब इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट करती है ना, तभी आइकॉनिक सिनेमा पैदा होता है। तो आप भी बताना आप कौन सी टाइप की फिल्म ज्यादा पसंद करते हो। टेल मी ऑन Insta@RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आदमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।